0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहें कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
12: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
12: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
12: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफुट 01274201679
8: UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रोन्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
9: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
9: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
13: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: अपने बंगाली भाइयों की खिदमत में एक नात का नजराना।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीज़े की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
14: You're listening to 07 Bradford Asian Radio on 1413 AM.

इंशाल्लाह तो झूम जाएंगे, जब झूमेंगे तो मोहब्बत से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, ऐसे नहीं जरा मोहब्बत से क्या कहेंगे। सुन्नी वो नहीं जो सरकार का जिक्र सुने और सुन के सुन हो जाए, बल्कि मोहब्बत से कहे। शायर कहते हैं

शेर है सरकार के दीवानों के लिए, चाहे करंट भी बढ़ रहा है, गर्मी भी है, जैसे भी है, सरकार का जिक्र सुनना है, सुनना है ना सरकार का जिक्र, सरकार के जिक्र से प्यार करना है। और जब क़यामत का दिन होगा, महशर का दिन बर्पा होगा, तो ये दीवाने क्या करेंगे। सुनिए शायर कहते हैं,

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
8: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
9: saferaider.co.uk
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर सम्त मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बॉफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
9: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
10: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
10: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग services.uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
12: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
14: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
9: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रैडफोर्ड 9627229622
14: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ulate.
1: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
7: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
7: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
7: जब चाहे कॉल मिलाएं
6: 01274781168
8: मीरपुर ट्रेवल्स
9: मीरपुर
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
7: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
10: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
10: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
7: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
7: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रैडफोर्ड
10: 01274201679 UK
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
2: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
5: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
6: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
4: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
5: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
6: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
5: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
11: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
11: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
11: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
12: किसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस Your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice. Your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइट रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
10: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: Bum chick bum, chick bum bum bum chick bum.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
5: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
6: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
4: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
5: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
6: शमा बुटीक ब्रेफोर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफोर BD89RY
5: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दें
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
9: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
8: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678
8: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी मौजूद सामीन इकराम, ब्राफ्रेशन रेडियो, वंस अगेन आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं अपने रेडियो का। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा रेडियो और खूबसूरत यहाँ की जितनी भी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ब्यूटीफुल लिसनर्स जो के मे बी के लास्ट जो मेरा प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी आपको थकावट ना हो गई हो ऑनेस्टली, लेकिन जिनके लिए था तरतीब दिया गया था बहुत उन्होंने लाइक किया, शुक्रिया अदा किया, स्ट्रेस दूर हुई और जो मकसद था प्रोग्राम का वो भी पूरा हो गया। तो खैर आज के प्रोग्राम का आप सबकी मनपसंद जो आ रहा है उसके मुताबिक खूबसूरत प्रोग्राम ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 एएम का खासा है और ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो की पहचान क्या मैं कह दूं आयशा अख्तर और आयशा अख्तर की पहचान ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है जी। हमारी वेबसाइट ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमेशा की तरह कॉल करना मत भूलिएगा, कॉल लाइंस ओपन हैं जी आपके लिए, और हमारा खूबसूरत सा फोन सेट जो है प्योर नीट एंड वाइट क्लीन आपका मुंतजिर है आपकी खूबसूरत कॉल्स का। बात होगी आज मौसम के हवाले से, जरा अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें थोड़ा सा।

जी मोजे स्वामी ने क्राम ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर आज आप एक इंतहाई दिलचस्प और तफरीह तबा से भरपूर प्रोग्राम जो है समात फरमा रहे हैं। आप कहीं भी बैठे हैं हमारी नशरियात से लुत्फानंदोज होना मत भूलिएगा। हमारे साथ साथ सफर कीजिए, आपका सफर सुहाना बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी हमारी वेबसाइट है bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677।

जी बिल्कुल है, वो कुछ सॉन्ग भी कुछ बड़ा ही एक और दिलचस्प आपके लिए होल्ड ऑन किया हुआ है। और बात हो रही है ख्वातीन की तैयारी के हवाले से, राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ख्वातीन की, मौसम सुहाना हो, दिलचस्प हो, खूबसूरतियाँ अपने रूज पर हो। आपको पता है, हर मौसम जब चेंज होता है उसकी अपनी ही एक खूबसूरती होती है। ये अलग बात है कि इंसानी तबीयत है, नाजुक है, कुछ उसके इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो मौसम के, वो इम्पैक्ट उनका जो है इंसानी तबीयत के ऊपर हो जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हम अपने आप को ढीठ ना थोड़ा सा बना लें कि ताकि ये जो मौसम की कारस्तानियां कह लें या मौसम की क्या कह रहे हैं, लहरें जो हैं मौसम की, ये हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो। चलें, बात ये होने लगी थी कि ख्वातीन जो हैं जब अपनी भरपूर परफॉर्मेंस में, कि जी आज कोई इवेंट है, आज कहीं कोई ऐसा ओकेजन है कि बस आज तो भई हम ही हम है, क्या ख्याल है, बड़ा सजे संवरे। और अपने लिए मैंने कहा था ना कि लव योर सेल्फ, कि हमने अपने आप से कैसे मोहब्बत करनी, अपने आप का दिल कैसे जीतना है। देखिए, ये जो एक आजकल ट्रेंड हो गया है, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर डिजाइनर एवरीवेयर, बड़ी इसके ऊपर हमारी इस्लामिक सिस्टर्स ने भी वीडियोस बनाई कि देखें जी आप जो हैं उनमें, हस्तियों का नाम तो यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगी ना ऑब्वियसली, कि जी वो बस फिर जब डिजाइनर सूट्स हर रोज एक की बजाय चार पहनती हैं, और फिर वो आपको पता है उनकी वीडियोस जो हैं इतनी वायरल हो रही हैं, एक नहीं वो कितनी हमारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो ओकेजनली कहीं इनवाइटेड भी होती हैं, वहां पे जाती भी हैं, तो फिर वो अपना घर, बड़े ही खूबसूरत किसी सिस्टर ने लिखा कि अब वो चाहेंगी कि भाई अपना घर हम दिखाएं, घर किसी, वो कहते हैं कि लग्जोरियस गाड़ी है उनके पास, लग्जोरियस उनके पास एवरीथिंग है घर के एक एक कोने से। अच्छा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं हम जाएंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, राइट। अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी चीज के ऊपर, मेरी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका पॉजिटिव पहलू जो है, क्योंकि भाई हमारे कहने से किसी ने बाज तो आ नहीं जाना है, ऐसा क्या है, हरगिज भी नहीं है। हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी का अपना जहन है, अपनी जात है, वो जिस तरह भी चाहें वो भी कर सकते हैं। हाँ ये है कि चलें जी आजकल ट्रेंड हो गया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो चलती है, जो कि राइट होता है इंसान का। तो पॉजिटिविटी ये है कि जी वहां पे जितनी गैदरिंग होती है, मधु किया जाता है फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर जो होती है उनकी क्या बात होती है, और जो उनमें डिशेस पकती है ना, वाकई वाकई दिल करता है कि उन डिशेस को बस किसी तरह हम भी, मैं अपने आप को कहती हूं कि हड़प करूं, लेकिन क्या करें, बस नहीं चलता। इसका एक पहलू तो है कि वो हम ख्वातीन को बहुत ज्यादा एक्टिव बना रही हैं भाई। अब ऑब्वियसली हम उसके ऊपर ग्रिप नहीं पा सकते, वहां जा नहीं सकते, हम ऑब्वियसली अटेंड नहीं कर सकते, हम तो पार्टिसिपेंट्स नहीं है उनके। तो फिर क्या होता है कि हमें जोश आता है। मैं कहती हूं कि इस जोश ने आयशा अख्तर की लाइफ को इतना चेंज, अल्हम्दुलिल्लाह, कि व्हाई नॉट मी, कि मैं क्यों नहीं ये रेसिपीज बना सकती भाई घर में। तो एक रेसिपीज होती है, और सबसे बड़ा जो इनका सेलिब्रिटीज का ये होता है कि ये इतनी खूबसूरत, चलें डिजाइनर पहनती हैं भाई, उनकी लाइफ, अल्लाह ताला ने जिनको अल्लाह की तकसीम पे हम कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकते हैं, हमें ओपन हार्टेड होके जी, ओपन ओपन माइंडेड, हमारे ब्रेन्स जरा थोड़े से, वो कहते हैं ना कि ब्रॉड माइंडेड, हमने अपनी अपनी जात को पेश करना है भाई, हमने कुछ लर्न करना है, सीखना है, बिकॉज दीज वीडियोज आर फॉर अस एंड वी हैव टू लर्न आइदर अ लेसन और एनी थिंग पॉजिटिव, बट इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए हमने पिक एंड चूज कर लिया।
अकॉर्डिंगली भाई, आप अपनी विशेज अकॉर्डिंग टू योर विशेज चॉइसेस आपने, मैं पिक एंड चूज करती हूँ कि वाह अगर हम यही रहे, मैं भाई मैं अगर जितनी मेरी अफोर्डेबिलिटी है मैं उसके मुताबिक अब ड्रेस अपूंगी। अब ये तो नहीं कि मैं जी इनके पीछे लग के, अपने घर को देखना होता है। ये अकलमंदी है, ये हमें सिखा रही है कि भाई ये उनकी, हमें जो अल्लाह ताला ने दिया हमने शुक्रगुजारी करनी। तो इन वीडियोस में से शुक्रगुजारी का भी एक पहलू आ गया, और सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि हम इतनी एक्टिवली, वो एक मोहतरमा जब आती है तो वो चाहे जितनी भी टायर्ड हो वो खाना इतनी तेजी से फुर्ती से डिशेस बना के रख देती है। और मेरी जितनी भी फेवरेट हैं भाई मेरी भी, उनके ऊपर मैं उनमें से पॉजिटिविटी लेती हूँ। मैंने कभी भी कि लो जी ये आ गई है शो ऑफ करने, दिस एंड दैट, व्हाई भाई, अल्लाह ताला ने दिया है हमें पॉजिटिव, उसमें से चूज करना है, एक्टिव होके घर के लोगों के लिए। और घर को जितना अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह, मेरी औकात से मैं कहती हूँ कि मेरी औकात से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह दिया, उसी को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, डेकोरेशन, व्हाई नॉट भी हमारी भी हो जाती अपनी। अच्छा अपने ऊपर तो अभी मैं आती हूँ, बस छोटी सी बात के बाद फिर आपको सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सा है वो सुनाना है। फिर क्या होता है कि जल्दी जल्दी से उधर से खाना बना रही हूँ, उधर से घर की, मतलब एक एक एक्टिव जो पर्सनालिटी है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि कम ऑन, व्हाई नॉट यू, कम ऑन वेक अप। फिर वो जो सुस्ती है, काहली है, कि मैं समझती हूँ कि आप, फिर अगर मैं ओपन बात करूं तो, लेकिन एक बात हकीकत भी है कि हम खवातीन ने कि जी बस थोड़ा सा बस हम जी बस अब बीमार हैं, काम नहीं करना, मूड नहीं है, काम नहीं करना, बच्चों ने तंग बहुत कर दिया है, काम नहीं करना, घर के काम पड़े, नहीं ऐसा भी नहीं है, बहाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न्यूली मैरिड कपल है या जो भी जिस एज रेंज में है उनके लिए एक बहुत एक इन्फ्लुएंस्ड जिसे कहते हैं ना वीडियो आई है, और उससे हमने जब फायदा उठा लिया, बेहतरीन लाइफ, उसके बाद अपनी पर्सनालिटी। मेकअप तो हम सब के पास बहुत होता है जितने भी हम पानी में हो, ठीक है ना, खवातीन के पास मेकअप की कमी नहीं होती। और अपनी वो कहते हर सात बार हर खातून खाना के पास एक खूबसूरत सा जोड़ा तो जरूर होता है, एक नहीं कई होते हैं माशाल्लाह। बन सवर के आईने के आगे खड़ी हो जाएं हम, अपने आप को खुद ही ट्रिब्यूट करें, अपने आप की खुद ही तारीफ करें कि वाओ वाओ, आई लुक लाइक अ बार्बी डॉल, वाओ अमेजिंग। सो वॉट, कोई हंसता है तो हंसे, यही तो है, चले एटलीस्ट आपके लबों पे हंसी तो आई ना जी, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बाबी डॉल बन सकते, सभी हैं। खुशी इस बात की मुझे होती है कि मैंने ऐसी ऐसी मैं वीडियोस देखती हूँ कि जिसमें जिंदा दिल खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके हालात जैसे भी हैं, वो एक कॉटन का बड़ा सा खूबसूरत सा सूट पहन के आ जाती हैं, और भाई उनका भी दिल करता है और खुशी है कि हर कोई अपने हालात जो है वो चेंज करने का, लेकिन अपनी ज़ात को चेंज करने का राइट रखता है जी, अपनी ज़ात को। हम कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मालिक ने बनाया मुझे बेहतरीन तख्लीक बनाया, हाँ यही रखना है। अल्लाह ताला की तकसीम है सब कुछ, दौलत, हुसन, जवानी, मान किस चीज़ पे है, अल्लाह की ज़ात की रहमत के ऊपर, उसकी रहमत से। ला तकना तू मेरा रहमत ला, कभी नहीं होना मायूस, हमेशा अपने आप को। और मेरे ये सेंटेंसेस मेरी फ्रेंड्स जब रिपीट करती है ना मेरे सामने, कहती है वाह तुमने दिल खुश कर दिया, तो मैंने बस सबका दिल खुश कर दिया, अपना भी करना है ना, तो अपने आप को बात गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि एक ही लम्हात में मैं सारा कुछ नहीं उगल सकती, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, होल्ड ऑन। चले एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते, उसके बाद फिर आपके कटहरे में आयशा अख्तर जी हाजिर हो जाएगी। चले एक खूबसूरत सा सॉन्ग तो इस वक्त बनता है ना जी।

0: जी बिल्कुल, सामईन इकराम, बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प सा सॉन्ग आपने समाअत फरमाया। इस वक्त ये जो जितने भी सॉन्ग हैं, जितना भी म्यूज़िक है, आपकी पसंद के मुताबिक जो है पेश किया जा रहा है, ताकि आपका मूड जो है बहुत खुशगवार रहे और बहुत खुशगवारी के साथ, बहुत ही खूबसूरत से मूड के साथ आप आज का प्रोग्राम जो है वो आयशा अख्तर के संग समाअत फरमाए। अभी आगे तो और भी सफ़र जो है बहुत सुहाना है। आज हमने ठान ली है कि आपका सफ़र जो है सुहाना ही रखना है, और हमारी घड़ी बता रही है कि अभी हमने ब्रेक पे जाना है, और ये ब्रेक आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। तो आफ्टर द ब्रेक आपके लिए बहुत ही ताज़ा ताज़ा, फ्रेश, अकॉर्डिंग टू द वेदर और अकॉर्डिंग टू आवर विशेज़ एंड डिज़ायर्स, आपके लिए ये हमने तैयार करके रखा है। हमसे मुराद कभी कभी अपने आप को वैसे हम भी कह लेना चाहिए, और ये बात इसके ऊपर जारी उसारी रहेगी कि कैसे अपने आप को हम कहने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। अपने आप को बहुत इज्जत देनी चाहिए। और देखिए, मैं कहती हूं कि हमारे अंदर जो होता है हम वही तकसीम करते हैं। अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, हम रिस्पेक्ट सबको देंगे। अपने आप को ब्यूटीफुल रखेंगे, सबको ब्यूटीफुल समझेंगे। क्या करें, घड़ी कह रही है चलो जी अब ब्रेक के ऊपर, मुझे कह रही है तो आफ्टर द ब्रेक आपके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह।
1: At BradfordAsianRadio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट, नया डिजाइन, नया अंदाज, आखिर क्या है राज?
6: इसमें राज की कोई बात नहीं, दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है।
7: जहां हमारी अभी सना सफिनास तवक्कल,
5: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा,
6: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं।
7: शमा बुटीक, ब्रेफोर बाजार, 36 सेमेट्री रोड, ब्रेफोर, BD89RY।
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
2: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी मोजो स्वामी निक्राम, वेलकम बैक ब्रफरेशन रेडियो 1430 एम पर धमाकेदार खुशबू से लबरेज खुशबूओं वाला उमंगों पर, आपकी उमंगों पर पूरा उतरने वाला प्रोग्राम जो है अब शुरू होने वाला है। दिलों की धड़कन जो है उसको कंट्रोल करें और हशाश बशाश होके रेडियो का प्रोग्राम सुने। तबीयत को हशाश बशाश रखना हमारा राइट है जी, हक है। आज खवातीन के हवाले से बात हो रही है जी, हम छा गई हैं, छाना है कहाँ पे, अपने घरों में जी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, चलते हैं हमारी वेबसाइट brafarationradio.co.uk पर और फिर चलते चलते हमारा रेडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। ये क्यों कहा जाता है भाई, वाओ वो फलां एक्ट्रेस देखे, मैं किसी को भी देखे, मैंने कोई नाम लिया बिल्कुल भी नहीं लिया, मैंने टारगेट किया नहीं किया, एक बात जनरल बात कर रही हूं भाई। हम सब अपने घरों की रानियां हैं, हम सब अपने घरों में खूबसूरत खूबसूरत जो हैं पर्सनालिटीज से माशाल्लाह भरपूर हैं। अपने घर को महकता रखना है अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, और घर की फजा को खूबसूरत और मुअत्तर रखना है। साफ सुथरा रहने से हमारा दिमाग जो है वो साफ उजला उजला उजला उजला रहता है, निखरा निखरा, निखरी निखरी सोच, निखरे निखरे आइडियाज, और बुझी बुझी तबीयत के साथ क्या घर के काम होंगे, क्या हम अपने घर वालों को, ये होती है मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल प्रोग्राम, और जो रियलिटी पर मबनी हो कि व्हाट्स द रियलिटी वी हैव, वी आर फेसिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हमारा जिंदा दिल रवैया जो है हमारी घर की फजा को बड़ा पुरसकून रखता है। हर रोज एक नए अंदाज से अपने आप को एक नए अंदाज से ताज़ा दम करें, फ्रेश करें। राइट है हमारा, अल्लाह ताला की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत क्या है, जिंदगी। इसको टेंशन्स में, लड़ाई झगड़ों में और खाम खा की चिख चिख में एक दूसरे के साथ, फलानी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, रिवेंज नहीं भाई। ये चीजें एक तो हमें इस्लाम भी, जाहरी बात है इस्लाम तो सबसे पहले हमें इन चीजों से एतराज करने को कहता है, और फिर ये चीजें जो है हमारे घर की पुरसकून फिजा को खा जाती हैं। वही देखे हर घर में, देखे इख्तलाफ राय होना इस नेचुरल आपका है ये रवैया, लेकिन इस पे ग्रिप पा लेना, इसको डोमिनेट कर लेना, बजाय ये कि ये हमें डोमिनेट करे हम इनको कर लें, इनके ऊपर पांव रख के हम फिर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना होता है भाई। और ये क्यों कि भाई फलां जो है वो बड़ी, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, देखिए अगर बात बड़ी तो फिर तो बहुत दूर चली जाएगी, कि छोटी सी ये मैं बात जरूर कहना पसंद करूंगी, अल्लाह ताला की हर तखलीक में देख लें, बच्चों से लेके बड़ों तक हम सब फीमेल में अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी होती है, ब्यूटी रखी होती है, हमने उनको अपने घरों में जब एनहेंस करना है अपनी ब्यूटी को, पर्सनालिटी को, फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस प्रोफेशनली हम जब जाते हैं, घर से जब हमारी शुरुआत निखरी निखरी उजली उजली होंगी, फिर यही पर्सनालिटीज जब काम पे हम जाती हैं, हमारा रवैया अपने सब कोलीग्स के साथ अच्छा है। चले जॉली जिसकी तबीयत है वो तो इस नेचुरल के वो जॉली ही है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनली एक लुक देना चाहते हैं, प्रोफेशनल लुक आपकी हो गई है और कहते हैं कि नहीं जी ये क्या है भाई, बस आप सीरियस भी रह सकते हैं, लेकिन उसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट की आमेजिश जरूर रख लिया करें, ताकि पता नहीं कोई किस कदर अपनी सिचुएशन में सफर कर रहा होगा या कर रही होगी इंसान कोई, तो आपकी हल्की सी मुस्कुराहट और आपके चेहरे का सुकून जो है दूसरे को पुरसकून बना देता है। करके देखिएगा, प्रोफेशनली हमारा हक है भाई, हम
अच्छे तरीके से ऐसे जाएं कि हमारे काम की जगह के ऊपर हमारा एक नाम बने, इंशाल्लाह हमारी पर्सनालिटी जो है वो इनहांस हो। दुनिया में जाना है वो तो बात की, पहले घर में तो छा जाएं हम। दिलों पे राज करना है, और दिलों पे राज करने के लिए बहुत सी आदत जो है उनको छोड़ना पड़ता है। मैंने अक्सर औकात अपने अंदर मैं समझती हूँ कि मैं जी बड़ी, लेकिन नहीं, हमारे बड़े बहन भाई जो होते हैं ना, वो वाकई अगर हमें छोटों को थोड़ी सी सरजनिश करते, समझाना चाहते, तो उनका कोई पर्पज होता है। उनकी उनकी कड़वाहट के पीछे बहुत ज्यादा मिठास छुपी होती है। जैसे एक माँ कहते हैं ना कि जिसने घर से माँ के जूते खा लिए, बाहर जाके उसको बच्चे को जूते नहीं खाने पड़ेंगे। माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा जो है ये, इसको क्या चाहिए, इसकी क्या। अब ये यकीनन जूते ही नहीं है, उसकी वो तरबियत है कि उस नहज पे की जाती है कि बच्चा जो है उसको जूते समझे तो वो समझे, लेकिन वो इन दर हकीकत उनको जूते मारना नहीं होता। वो कहते हैं ना कि दो सोने का नवाला और रखो शेर की आंख। हाय अल्लाह जी, की करा मैं तो खुद सर पकड़ लेनी हूं बाज़ औकात ए गल्लां जड़ियां ना, क्योंकि हुण मेरे को पंजाबी जड़ा ना गाना ओ भी बड़े वधिया तुहाडे लई मैं तैयार कीता, तुसी बड़े खुश होंगे। पहले शुरू तो सुनियो, अगे जाके बड़ा ही सोहना होने वाला, ठीक है। वो गल हैगी इह कि कह तो लैनी मैं खुद भी जो सोचदी वो अल्लाह दी बंदी है की कह रही हां, प्रैक्टिकली हार्ड लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और हार्डशिप्स के बाद जो सुकून मिलता है, जैसे आप बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की, स्टबन किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, स्टबन किस्म की, अब बस डाइटिंग डाइटिंग डाइट प्लान क्या होता है कि बस आज से शुरू करनी है, भाई क्या है जो भी खाना सामने आता है खाने को दिल करता है, लेकिन हमने अपने आप को बड़े तरीके से उसी खाने के अंदर बड़ी रद्दो बदल करके कड़वी कड़वी चीजें डाल के मैं बात ज्यादा नहीं कर सकती, तौबा मेरी, मैं तो कानों का तौबा तौबा तौबा तौबा, आई एम नॉट अ डॉक्टर भाई, डिस्क्लेमर बड़ा मानना पड़ता है, लेकिन अच्छी पते की बात तो भाई हो रही है तो करनी चाहिए ना। तो जैसे हम एक स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट प्लान के बाद और एक्सरसाइज करके सुकून से बैठते हैं, कभी आपने देखा है वो सुकून कितना सुकून होता है, उसमें कितना पुरसकून वो सुकून होता है, कितनी उसमें हमारे दिल को एक मिलती है आसूदगी, राहत। कितने खूबसूरत वर्डिंग है ये, आसूदगी और राहत। तो फिर ऐसे ही ये स्ट्रिक्ट किस्म की जो होती है ना, इसमें ये नहीं कि हमने वाकई उसमें बच्चों की पसंद को नजर मद्देनजर किया, अगर वो उनका मूड है कि चलें जी उठें अब हमने पार्क जाना है तो भाई लेके जाना पड़ता है भाई, बच्चे कह रहे हैं हमने ये खाना खाना है तो ये बनाना पड़ता है भाई, अपना आराम छोड़ना पड़ता है, वो स्क्रोलिंग वीडियोस नहीं होती हैं, ये ऐसे नहीं चलता अब। और वो बस मुझसे ज्यादा अब कौन इस चीज को समझ गया है भाई, तो बात तो होती है ना, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस शामिल हो, थोड़ी सी डेली रूटीन मैटर्स हो, आप सब की, हम सब की एक ऐसी गुफ्तगू हो जो प्रैक्टिकल, आई लाइक टू बी प्रैक्टिकल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, आज तक इसी अल्लामा इकबाल के शेर में ही खुबे रहे कि इसका मतलब क्या है, जब सर पे पड़ती है ना तो वो एक इंसान होता है ना, वो कहता है कि शादी से पहले मेरी जिंदगी के 10 सुनहरी उसूल थे कि मैंने शादीशुदा लाइफ को ऐसे गुजारना है, ऐसे गुजारना है, रोमांटिक, ब्यूटीफुल, वाओ, फुल ऑफ थ्रिल, दिस एंड दैट। ओके, कहता मेरी शादी हो गई, अब मेरी शादी हो चुकी है ना, मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन उन 10 असूलों में से मुझे एक भी असूल याद नहीं। तो ये ऐसे होता है, हम प्लानिंग करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है उसकी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ हम खुद जो है ना, मैंने देखा है बच्चे हूबहू पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, बताते भी नहीं है, फिर वो सियाने भी कहते हैं कि भी जैसा दरख्त होगा फल भी वैसा ही होगा। जरा हम सब सोचें इस बारे में,
जब नए नए घरदारी संभालनी पड़ती है तो ये कितनी कड़वी कसैली बातें लगती हैं, मुझे बड़ी तलख लगती थी। जैसा फल, जैसा बीज डालोगी वैसा ही फल उगेगा। भाई आप सब मुझसे ज्यादा जरा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को और सोचें और परखें, और इतना कुछ फिर भी मेरे दिमाग में चल रहा है। आप कहेंगे ये स्टार्ट होती है नॉन स्टॉप, रुकना पड़ता है भाई आप सबकी खातिर, क्योंकि आप भी मुंतजिर होंगे एक ऐसे जबरदस्त सॉन्ग के जो हम सबको बड़ा लुत्फ देने वाला है। खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए सब जरा सुनते हैं।

जी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, और बहुत ही सद एहतराम हमारे सुनने वालों के लिए अब बहुत ही खूबसूरत सा एक सेगमेंट शुरू होने वाला है। आप बहुत लुत्फंदोज होंगे, प्यारी प्यारी बातें हैं उसमें। इससे पहले ब्राफरेशन रेडियो 1430 AM, जी आयशा अख्तर की पहचान, और सबसे बेस्ट इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियों पर गामजन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अल्लाह ताला इस चैनल को, इस रेडियो को इंशाल्लाह ताला पहुंचाए, हमारी दिल की दुआएं अथाह गहराइयों से इंशाल्लाह, और आमीन सुम्मा आमीन। जी हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk है जी, और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। बिल्कुल, ये सेगमेंट जो है ना, उन देखें, मैंने इर्द गिर्द का माहौल का जब जायजा भी लिया है, देखा है हमारे बहुत ही, देखें ये यहाँ पे आके आप लोग कहेंगे कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज अ रियली रियली रियलिटी, ऐसी है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कानून कुदरत भी देखें, एक मैंने बहुत इर्द गिर्द देखा कि बड़ी बड़ी खूबसूरत जो हमारी सिस्टर्स हैं, ओवरऑल देखें बड़ी बड़ी जी ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज, और बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला हम सबको अपनी जुमान में रखे इंशाल्लाह ताला आमीन। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ बता रही हूँ कि उनके साथ कोई ऐसा, बल्कि एक डॉक्टर थी, एक डॉक्टर की एक डिसेबल्ड बच्ची थी। मैं ये स्पेशल जो बच्चे हैं या अफराद हैं माशरे के, अच्छा इनकी प्यारी प्यारी बातें भी आपसे ज़रूर मैं शेयर करूंगी, इधर उधर नहीं जाना। और क्या हम इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाते हैं, या कोई लोग जो हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, दिस एंड दैट, वो बहुत वसी नहीं, छोटा सा हल्का सा सेगमेंट ज़रूर होना चाहिए, हक है भाई इन लोगों का भी। और बल्कि मैं तो कहती ये प्रायोरिटी लिस्ट पर रखें तो बहुत अच्छी बात होगी, ये इनोसेंट होते, मासूम अनिल खता होते। तो वो डॉक्टर की जो डिसेबल्ड बच्ची थी, तो वो कह रही है, उसने खुद बयान किया कि मैं तो पहले सर पकड़ के बैठ गई कि मैं इसका करूंगी क्या, मैं कैसे इसको पालूंगी। तो ये रियलिटीज जो होती है ना, ये इंसान को ऐसे करीब कर देती हैं हकीकतों के, कि देखने वालों के लिए एक लेसन भी बन जाता है और एक सबक मिलता है, और इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो वो बच्ची की ऐसी तरबियत की गई कि वो क्या कहूँ कि एक ज़माने पे छाई हो, उसने बहुत ज़्यादा अपनी हुनरकारियाँ, और फिर वो कहती है डॉक्टर कि मैंने अल्लाह ताला की शान को बड़े करीब से, कुदरत को देखा कि रब अगर कोई चीज़ आपसे लेता है तो देता बे इंतहा है, देता बे इंतहा है, और उसकी तकसीम पे राज़ी हो जाए कि मैं खुद एक डॉक्टर और बड़ी वो पढ़ी लिखी फैमिली, और इस तरह से, और इस तरह से। अच्छा अब हमारे जो मतलब पाकिस्तान के एक एवरेज घराने का ले लें हम, तो वहाँ पे वो बड़ा एक दिलचस्प सा कि ये बच्चों की भी अपनी चॉइस होती है, इनकी अपनी एक ये भी पसंद के मुताबिक जो है खाना पीना और पहनना ओढ़ना पसंद करते हैं। हम खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने का लेसन दें, और अपने आप को हमेशा हम अपनी इंटेंशन ये रखें कि हमने ब्यूटीफुल बन के दूसरों को भी ब्यूटीफुल बनने का जो है वो लेसन देना है, पॉजिटिव सेंस में रहते हुए। अच्छा वो मुझे बात याद आ गई उस बच्चे की कि वो कहते हैं कि वो जी खाना खा लो जी, मैंने कहा ये समझता है, कहती है अरे इससे ज्यादा कौन समझ सकता है, इसका घर में जो खाना पकता है ना, वो उसने कहना है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे आप बाहर से ऑर्डर करके दे। तो उनको जी मैंने बर्गर ही खाना है, मैंने पिज्जा खाना है जी, वही आएगा, और वो कटलस क्या होते, पोटैटो कटलस, दिस एंड दैट, जो भी होता है जी, बाहर से आएगा, बस जी उसने कह दिया है। तो

जो रखने वाले ख्याल रखते हैं ऐसे बच्चों का, तो बड़ी एक खूबसूरत सी बात उसकी। मैंने कहा अगर वीडियो बनती तो वायरल ही हो जाती। उससे घर वालों ने कहा कि जी भी खाना खा लो, तो पूछता है क्या पका है, तो घर वालों ने कहा कि अब टर्निप्स आप कहेंगे कि ये जी शलजम आपको, वैसे मोस्टली मेजॉरिटी हमारी कई इसके नाम है, खुद हमारी कम्युनिटी में भी इसके कई नाम हैं, तो चले मैं टर्निप कह देती हूँ, इंग्लिश कवर कर जाएगी सबको, शलजम हम तो कहते हैं, तो जी ये पकाए हैं। तो बड़े आराम से कहता है क्या इसमें मुर्गी डाली है। तो वो सारे इतना हंसे कि देखो इसको मुर्गी खाने का मन कर रहा है, तो इसका जी चाह रहा है, और कहते हर वक्त हम इसको मुर्गी तो नहीं, हम बाज़ुकत हमारा भी दिल करता है कि हम सब्जियां वगैरह खाएं, लेकिन वो उसकी बात बड़ी मासूमाना बड़ी फैल गई फैमिली में कि मुर्गी डाल ली है इसमें। तो ये होता है कि ये ओवरऑल भी जब मैं खुद भी यकीन करें कि बस समटाइम्स ऐसा देखने में आता है कि बड़े बेजार से बच्चों का, अगर बच्चे हैं या कोई ऐसा डिसेबल्ड मतलब स्पेशल इसको कह लेते हैं, स्पेशल जो उनके साथ पर्सनालिटी है, मेल फीमेल बच्चे हैं स्पेशली बच्चों के हवाले से, बस उनकी एक जिम्मेदारी है, उसको पुश करके बच्चों को लिए जा रहे हैं। और जबकि कई दफ़ा मैंने बड़ी शफकत से मोहब्बत से उनसे पूछा तो वो बड़े खिल उठे, उनका दिल करता है हमसे कोई बातें करे। और ये सब कुछ क्या है चल रहा है माशरे में, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये दूसरों को जिंदगी देने के लिए, और यही वो मैं कहती हूँ ऐसी नेकी है कि मेरे रब को बड़ी पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो हकीकतें हमारे माशरे के साथ हैं, ऐसे ऐसे घरानों में कि वो समझते हैं कि, और फिर अल्लाह ताला वहां पे एक स्पेशल इस तरह का कोई फर्द डाल के दिखाता है कि मैं, मेरा अल्लाह पाक है, तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा जो हैं, इनको बहुत ज्यादा मुकाम देना चाहिए, इनको बहुत ज्यादा इज्जत, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और यकीन करें कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, इस आजमाइशों से महफूज रखे, आमीन। लेकिन अगर कोई सफर कर रहा है तो उसका थोड़ा सा साथ बन जाए। हम अपनी भाग दौड़ में बस हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कभी इनकी तरफ देखे ना, तो ये तो क्या है, अल्लाह ताला की एक निशानियां है ना हमारे लिए। तो ये अगर इनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, इनके सरों पर शफकत का हाथ नहीं रखेंगे, तो चलते चलते कोई ऐसा उसके सर पे शफकत का हाथ रख के उसका हाल चाल पूछ लेना, वो बड़ा खुश हो जाता है, पता नहीं उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी हमारे लिए। बाज़ औक़ात होता है कि फैमिलीज नहीं लाइक करती, लेकिन मैं कहती हूँ मैं आई डोंट बॉदर देम, क्योंकि ये इस वक्त मेरी तवज्जो का मुंतजर है, तो मैं उसको, लेकिन धीरे धीरे फिर फैमिली का भी मूड ठीक हो जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि ये जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, थोड़ा सा इनका भी ख्याल रख लिया जाए, तो क्या ख्याल है आपका, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी ऐसी ही हकीकत है ये।

0: जी बिल्कुल मोहतरम सामईन इकराम, ये ब्रॉडकास्टेशन रेडियो 1413 AM है और आयशा अख्तर के संग आप एक नहायत दिलचस्प बट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से महजूज हो रहे हैं। हमारी वेबसाइट है bradfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। बिल्कुल जी, हमारी घड़ी बता रही है कि हमें ब्रेक पर जाना है। ये ऑब्वियसली आप सबको पता है हमारी ये ब्रेक्स जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है, तो ज़्यादा मज़ीद इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते जी। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको पता है। तो जी एक मिनट है और आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह एक फिर फ्रेश से सेगमेंट के साथ, फ्रेश सी गुफ्तगू के साथ। और आज देखते हैं घर में गोभी पकती है, पालक पकती है, आलू मटर पकते हैं, मिक्स्ड वेज बनती है, क्या बनना है आज? लज़ानिया पे ही आज इक्तफा कर लिया जाएगा या और मनपसंद डिशेज होंगी, बताते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी,
7: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट, वीजा सर्विसेज,
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
7: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: जब चाहे कॉल मिलाएं
6: 01274781168।
8: मीरपुर ट्रेवल्स।
9: मीरपुर
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
0: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
7: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
9: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: Yes, of course. Our voice, your choice. Aisa hi hai ji. Bradford Asian Radio, the most favorite and most famous radio. Alhamdulillah. बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM, हम सब की पहचान, और ब्रेफर्ड का एक नाम भी, देखें ब्रेफर्ड की हैसियत से इसका नाम भी हमने ब्रेफरेशन, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन माशाल्लाह क्या खूबियां हैं, क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाऊं, इतना ही काफी। ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आप आशा अख्तर के संग एक क्यूट सा, एक दिलचस्प सा और भरपूर, वो कहते हैं ना थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी उर्दू, जी बिल्कुल एक भरपूर प्रोग्राम, जिसे कहेंगे जिंदगी से भरपूर प्रोग्राम इंशाल्लाह सुन रहे हैं जी। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। क्या ख्याल है कि मैंने अभी नाम लिया, कितनी सब्जियों के मैंने नाम ले लिए। हम खवातीन का ये डेली मैटर होता है कि क्या घर में पकाना है, क्या ऐसा ही है घर में आलू मटर, एक कहते हैं आलू मटर पकेंगे, दूसरे नहीं नहीं नहीं मिक्स, अच्छा ये मिक्स वेज में बाद में आते हैं, कुछ कहते हैं ओए वो देखे बैंगन जो होते हैं ना ओबरजीन, इसको बताऊं भी कहते हैं ना, तो वो कहते हैं वो हमारे अक्सर एक गिराने में हमारे घर में होता था, क्या क्या बताओ बताओ, क्या पकाऊ बताऊ, क्या बताओ ना क्या? इतनी इसमें बहस चलती थी ना। अच्छा मेथी पालक पका लिए, इसमें कोरिएंडर डाल लिया, तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या क्या सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे, बहुत सी चलता है कि जी नहीं मैंने ये नहीं खाना, आपने नहीं ये नहीं खाना, ये है वो है, करते करते चलो जी तान टूट गई, मिक्स्ड वेज पका के जान ही छुड़ाओ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा हटके बनाना होता है कभी कभी, अच्छा फिर बहुत ही हटके बनाना हो पकौड़ों वाली कढ़ी बना देते हैं, फिर क्या बनाना है साग बना लेते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा मजे की बात इसमें ये मैंने निकालनी थी, हमारी प्रैक्टिकल, हमारी शहजादियों के लिए, हमारी शहजादी बहनों रानियों के लिए, हम सब इंशाल्लाह ताला अपने घर की शहजादियां, इंशाल्लाह हम सब अपने घरों की रानियां, बड़ी माशाल्लाह हमारे वही पेरेंट्स ने हमें बड़े चाव लाड से और बड़े प्यार से हमें रखा पाला, और फिर हम अगर अपनी वुकत खो देंगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे वैल्यू देंगे, क्या ख्याल है आपका, और फिर अपने घर के हर अफराद को, जब घरों में बड़ी इज्जत मिली हुई हो तो वो अकलमंद जो बहू होती है ना वो पूरा घर संभाल लेती है, वैसे प्रैक्टिकली तो अल्लाह ही बेहतर जानता है अब तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब हम घर में बैठ के ऐसी बातें करते हैं तो हमारे मोमिन भाई साहब कहते हैं, बहुत हम उनको सारे फैमिली में मोमिन कहते हैं, नमाजों की पाबंदी उनकी होती है, तो बोलो झूठ और बोलो तो मैं यहाँ पे वो झूठ नहीं बोल रही हूँ और झूठ बोले घरों को संभालती हैं या फिर तबाही मचती है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह सीरियस हो जाते हैं भाई, सीरियस मामला चल रहा है, बहुत कुछ होता है, देखें ये भी कुछ होता है वो भी कुछ होता है, आफ्टर ऑल कम टू द पॉइंट, वो कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, ये है भाई कि इस फैक्ट एंड रियलिटी ऑफ लाइफ के वाकई एक अच्छे माहौल में पली बड़ी जो बच्चियां होती हैं ना, जिनमें बड़ी संस्कारी गुण जो होते हैं ना वो डाले जाते हैं, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, कि वो वाकई हर घर में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, लेकिन उसको बात को ख़त्म कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर की तरफ कैसे लेके जाना है, इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे पैदा कर सकेंगे, और ये सब कुछ जो होता है ना, क्या ख्याल है, हम शहज़ादियों को ऐसा करना चाहिए ना, रानियां भी हैं हम अपने घरों की, और इंशाल्लाह आप सब के लिए और हम मेरे लिए, हम सब के लिए ये फिक्राए लम्हाए फिक्रिया है ना, सोचने की बात है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम भी कर रही हूँ तो अगर इसमें इस्लाही पहलू ना रखूँ तो क्या वो मेरा मकसद जो है कहने का, बैठने का, यहाँ पूरा होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से अगर हम अपने घरों में फजूल की बातों को, इर्द इर्द गिर्द की बातों को शामिल कर लेंगे तो फिर वो माहौल ख़राब होता है ना, और फिर जब बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव जो एक रिश्ता है और हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता, उसमें भी बहुत सी बातों को मसलहतन हमें दबाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, और कंप्रोमाइज़ कितना खूबसूरत वर्ड है ना, आज कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी से ना, वो कहते हैं मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत पोइट्री है। अच्छा, मैं वो देख रही थी आज वीडियो उसकी बुशरा अंसारी, एक ऐसी ये हमारे पास ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम पाकिस्तान का ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड वाइड एक ऐसा विरसा कहेंगे कि जिसने प्रैक्टिकली हमें औरतों को बिलखसूस जीना भी सिखाया है। अच्छा, वो उस दिन बड़ी उसकी फेवरेट सी बात के कहती है, अभी देखो वो उसने बोला कम ज़र्फ और कम अकल लफ्ज़, वो कह रही है मैं आज लफ्ज़ ये बोलने लगी हूँ कम ज़र्फ और कम अकल, किसके लिए? कहती है लोगों को अपनी सच्ची उम्र भी बता देना कि मैं लाइक, वो कह रही है मैं 70 हुई है ना, उसने कहा खुद कहा कि मैं 70 अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने लगी, तो वही बात आ गई कि कहते 75 80, तो कहती ये कम ज़र्फ और कम अकल ऐसे होते हैं जो कॉमेंट्स देते हैं, सच बोले तब भी नहीं इनसे जान छुड़ाई जा सकती, झूठ बोले तो फिर भी फड्डा और रौला, तो ये सारा कुछ वो कहती क्या चलता है कि हम सच की भी वैल्यू नहीं करते, इसको वैल्यू लेस कर देते हैं, इसकी कोई ना कोई तो वक़्त होनी चाहिए ना। तो ये मुझे उसकी बात, और फिर वो बड़ा हेल्थी सा नाश्ता कर रही थी, ब्रेकफास्ट उसका बड़ा ही मुझे पसंद आया, और आप भी फिर वो बहुत सी बातें जो है वो फिर ओपनली कही भी नहीं जा सकती, आप ज़रूर YouTube चैनल खोलिएगा और बुशरा अंसारी का ब्रेकफास्ट ज़रूर देखना चाहिएगा आपको, और देखना चाहिए और देखना मत भूलिएगा, बहुत ही हेल्थी किस्म का और वेरी नाइस, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमें फिर देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं ये अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए और अपनी जवानी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ को कायम और बरकरार रखने के लिए, कितनी खूबसूरत जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ें पैदा की हैं उनका सहारा लेती हैं, और 70 ईयर तक वो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आई लाइक हर, और उसके वो मेरी फेवरेट एक ऐसी जिंदा दिल खातून है कि जो जिंदगी जीने का दर्स देती हैं। ऐसी जितनी भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं पॉजिटिविटी में, तो हमें खुद को पॉजिटिविटी मिलती है, हमें जीने का हौसला मिलता है, और ये जो होते हैं ना जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, ये हमारी जिंदगी के साथ लगे हैं, और इनके ऊपर ओवरकम आना है, आप सबका जो है एक साथ जो है वो हमने एक साथ आप सबके निभाना है, आपका साथ लेके चलना है। तो ये सारी जो होती है ना, फिर मिला जुला एक काम होता है और इसको ज़रूर देखना चाहिए। इस वक्त मेरे पास दिलचस्प सा एक सॉन्ग है और आई होप यू विल एंजॉय दैट सॉन्ग। चलिए आइए खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं।

जी माजा सामीन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर आज का जो प्रोग्राम है वो इस तरह से मैंने तरतीब दिया था कि कुछ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशंस हैं और डिफरेंट किस्म के टास्क जो हैं वो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही थी। और कोई ये कहूँ कि कोई मैंने कोई पर्टिकुलर जो है यहाँ पे स्पेसिफिक किस्म का कोई टॉपिक जो है वो मैंने मुंतखब नहीं किया। चुटकले और धीरे धीरे हल्के हल्के मौसम से शुरुआत करते करते फिर जो है रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हमारे साथ, स्पेशली विमेन के साथ जो है ना लगे हुए कुछ मसाइल कह लें या लगे हुए हमारे साथ ऐसी हकीकतें होती हैं कि जिन पर हम अबूर तो नहीं हासिल कर सकती लेकिन कोशिश कर सकती हैं कि काफ़ी हद तक हम अपने इस्लाही पहलू जो हैं इर्द गिर्द से भी लें, खुद की ज़ात को मोर एंड मोर जिसे कहते हैं कि हम निखारें और हम अपनी अंदर की सलाहियतों को बरोए काल ला कर हमारे स्पेशली घर के माहौल को जो है घर की फिजा जो है उसको पुरसकून रखें। और बाकी देखिए हमारा ईमान और यकीन तो अल्लाह पर है ना, तो वही अल्लाह करीम है जो सारी हमें नेमतें देता है, तो उसका शुक्र अदा करते हुए जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हमने इस्तेमाल जो है या ब्रुएकार कैसे लाकर अपनी जिंदगियों को खुशियों से भरपूर करना है इंशाल्लाह। तो जनाब आगे चलते हैं, हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। जनाब का लफ्ज जो इस्तेमाल करती हूँ तो ये जी अजराहे तज़करा जिसे कहते हैं वो कर लिया जाता है, तो मैं भी अब इसको मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में गाहे बगाहे अच्छी सेंस में यूज़ कर रही हूँ। चलिए खैर थोड़ी सी वजाहत, कोई ऐसा आपके पास लफ्ज़ या सेंटेंस हो तो उसकी करनी भी पड़ जाती है। हम आगे मेरे पास और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि बड़े नॉर्मल से खुशगवार से मूड में हम अपने प्रोग्राम को ऐसे लेकर चलें कि जिसमें ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो राज करें इंशाल्लाह, हमारी तबीयत खुशी की तरफ माइल हो और दिन भर की जो मशक्क़त है वो हमें फील ना हो और हम हकीकतों की दुनिया में रहते हुए बड़े खुशगवार तरीके से अपनी जिंदगियां जो है मतवाजन पेस पे गुजारें। तो यही मेरे आज के प्रोग्राम का जो है वो मकसद भी है, मुद्दा है आप सबका साथ लेकर। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खुशी महसूस करती हूँ यहाँ पे बैठना भी, और आपके जी पाकिस्तान से जिन फैमिलीज़ ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है स्पेशली उनकी फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। हमेशा की तरह श्याम जी ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है, उनका बहुत शुक्रिया। अगर आप अब भी सुन रहे हैं हमारे साथ हैं, आपका प्रोग्राम में शमूलियत का शुक्रिया। और जो हमारे से कहेंगे कि कलरफुल सिलेक्शन है हमारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स की तो उनको पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहें हमेशा और हम भी इंशाल्लाह हमेशा, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं चाहने वाले हैं जितने भी जहां तक मेरी आवाज़ जाती है और प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आप सबका भी शुक्रिया भी और ढेरों ढेर दुआएं भी हैं जी आपके लिए, हमारी रेडियो की टीम के लिए तो हमेशा से दुआएं होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। बेशक अब मैं एक लफ्ज़ जो है ना कटर भी कह लें और प्योर किस्म का जो है ना वर्ड जो है कि पुश्त पनाही जिसे करना कहते हैं ना, कि आपके लिए वो एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि जिसमें आप मैं हम सब जितने भी रेडियो हमारे प्रेजेंटर्स या हमारी रेडियो टीम जो भी हैं यहाँ पे करने वाले वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें अपने आप को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बोथ वे सिस्टम, मैंने पहले भी कहा है कि हम एक चलें आपको एक अच्छा जो है तफरीह तबाह का प्रोग्राम तो, लेकिन साथ उनका जो एक हमें माहौल क्रिएट करके देना होता है मेरे ख्याल में वो
हमारे प्रोग्राम्स की जान बनता है, तो जिसमें हम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं एक, और फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं आता है, तो फिर वो प्रोग्राम्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और आप सब की पसंदीदगी जो होती है वो हमारे प्रोग्राम्स की जान होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त घड़ी पे इससे पहले कि हमें फिर ब्रेक आन दबोच ले, तो फिर ये खूबसूरत सा, तो वो ये मैं गुड सेंस में कह रही हूँ, जो कि ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है, आप भी समझते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को। तो जी ये ब्रेक पर जाने से पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जो है आपके लिए ज़रूर पेश करूँ।

0: ब्लाउज की पहनेगा तो सब कुछ यही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज.UK।
4: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी वेलकम बैक। ये कह लेना अच्छी बात होती है अपने ब्यूटीफुल से लिसनर्स के लिए कि जी हम फिर दोबारा तशरीफ ले आए हैं जी आफ्टर द ब्रेक ब्रॉडफ्रेशन रेडियो 14:13 AM पर अशक्तर आपके लिए आज का जो मैं कहती हूँ ये कि खसूसी सा प्रोग्राम बन गया है कि जिसमें हम आपस की जो बातें हैं ना फीमेल स्पेशली ख्वातीन जो हैं उस हवाले से बात बहुत अच्छे तरीके से आगे पहुँच रही है। फीडबैक का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को चाहने का, सराहने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया जी। हमारी वेबसाइट broadfrationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमेशा से शुक्रगुजारी में रहें तो बड़े फल मिलते हैं जी, मीठे मीठे स्वीट स्वीट फ्रूट खाने को मिलते हैं और सोचें अच्छी होंगी तो फिर वो कहते हैं तख्लीक कारी भी अच्छी होगी और दिल अच्छा होगा और तो फिर उसमें मन चाहेगा कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा करें। और मैंने आज एक किस्म का ये प्रोग्राम जो है वो सब मिलके जो है एक खुशगवार सा खूबसूरत सा माहौल पैदा करना और ये अगर हमारी फीमेल की एफर्ट्स हैं तो वो सारी अपनी फैमिली के लिए और जितना भी हम अपना वजूद जो है बाइसे रहमत और बाइसे खैर व बरकत बनाएंगे दूसरों के लिए, यकीन करें हमें उसके रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल मिलेंगे और स्पेशली अपनी घर में बहुत ही खुशगवार सा एक माहौल रहेगा। ये हो जाता है कि सम टाइम हमें ऐसी सिचुएशन का जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक ऐसी गंभीर किस्म की सिचुएशन से भी वास्ता पड़ जाता है, लेकिन जीत अल्लाह ताला उन्हीं के मुकद्दर में रखता है जो साबित कदम रहते हैं। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हुए साबित कदमी जो है ना वो इंसान को अपनी मंजिल तक ले जाती है। हम ख्वातीन जो है ना बड़ी, मुझसे ज्यादा कौन नाजुक दिल होगी कि फिर ऐसा देखा कि बड़ी बड़ी बाहिम्मत जो ख्वातीन होती हैं वो हमारे लिए मशाले राह होती हैं और उन्हीं में से अगर हम अपने घर की जो है बड़े जो हैं चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं उनको अपने लिए हम एक अपना जिसे कहते हैं ना कि आइडियल पर्सनालिटी बना लें तो ये आइडियल पर्सनालिटी जो है ना ये खुल के हमारे सामने होती है हर वक्त। वो कहते हैं कि सच जो होता है ना वो कड़वा लगता है, झूठ बड़ा मीठा लगता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते, लेकिन जो सच कड़वा होता है ना उसकी कड़वाहट जो होती है ना वो वक्ती तौर पे होती है लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स उसके बड़े अच्छे होते हैं। तो उसमें रहना सीख लें और फिर मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी बनती होती हूँ कि वाकई अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं आपस में बात करते हैं तो चाहे उसमें हमें कुछ हमारी ज़ात को नफ़ा नहीं पहुंच रहा, खुशी इस बात की होनी चाहिए कि वो हमारी फैमिली है। हमने सब्र भी किया और ज़बत भी किया लेकिन अपनी फैमिली के लिए, तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। बहुत से ऐसे मराहल होते हैं कि वहां पे अगर हम सब्र का दामन छोड़ दें हाथों से कुछ नहीं मिलता, जबत और सब्र से काम लें तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है। क्या ख्याल है आप?

जी, सामयिन इकराम, गुफ्तगू जो है अभी है, जो है वो सिमटते समेटते समेटते जाएगी अपनी मंजिल की तरफ तरफ जरूर जाएगी जी। हम अच्छी गुफ्तगू अगर आपके पास भी है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बनना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, आपके लिए कोई कबाहत नहीं है जी। आप फोन नंबर हमारा मिलाइए 01274306677। इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं जी, आपकी जो भी फरमाइश है उसको खैर मकदम किया जाएगा उसका जी। बिल्कुल, इस वक्त मेरे पास एक खूबसूरत सा सॉन्ग ज़रूर है, लेकिन मैं फिर वो चलें बात, कोई बात नहीं, पंजाबी तो नहीं, उर्दू ही बोल रही हूँ तो चलें, चल रहा है जो भी सिलसिला। और लेकिन ये सॉन्ग जो है आपको ज़रूर महसूस करने में हेल्प करेगा, महसूस ज़रूर करेगा, चलें ऐसे कहते हैं। ठीक है, सुनते हैं जी एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

जी बिल्कुल, गुजारिशों पे गौर करना चाहिए भाई, क्यों नहीं। गुजारिशें कई किस्म की हो सकती हैं और गुजारिश एक दूसरे का ख्याल रखने में भी हो सकती हैं, माहौल को खुशगवार रखने के लिए भी हो सकती हैं, अपनी फ़र्ज़ फ़राइज़ हक हकूक के लिए। ये सारा कुछ मुआशरे में एक दरहम बरहम नहीं करना है सिस्टम, एक सिस्टम के तहत इसको खूबसूरती से निभाना है। बात पते की है, ब्राडफोर्डेशन रेडियो 1413 AM जी, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान ब्राडफोर्डेशन रेडियो 1413 AM और हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। बिल्कुल, कहा जाता है कि जी पर्दा जो है वो लाजमी है, पर्दा जो है फर्ज है। बिल्कुल जी, पर्दा फर्ज है, पर्दा जो है उसकी फर्जियत से इनकार किया ही नहीं जा सकता। जब आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो है किसी ऐसे माहौल में खेल रहा, पर्दा जो है उसकी फर्जियत से इनकार किया नहीं जाता। जब आ बच्चा, हमारा बच्चा जो है किसी ऐसे माहौल

की हमारी खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, घरेलू अज़्दवाजी जिंदगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े कुछ ऐसे रिश्ते हैं, हमारे दोस्त अहबाब के कह लें कि उनमें कुछ घरेलू नाचाकियाँ चल रही हैं या हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, ना खुशगवार हैं, तो खुल के हम उनके सामने अपनी खुशगवार जिंदगियों का जो है इजहार नहीं कर सकते, यही पर्दा है। हमारे घर में तरह तरह के खाने पकवान पके जा रहे हैं, लेकिन हमारे हमसाए के घर में चूल्हा जो है वो कई दिनों से नहीं जला। हमारे इर्द गिर्द के जितने भी हमसाए हैं उनमें से बाज घर कुछ ऐसे जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जिनके घरों में तरह तरह के खाने जो है वो नहीं बन रहे। तो हमारे चूल्हा जलाते वक्त डोइयों चमचों करछों की आवाज जो है उन तक ना पहुंचना पर्दा है। फिर अपने सालन को ज्यादा बढ़ा लेना, उसमें शोरबा जिसे कहते पानी डाल लेना या कोई भी पकवान आप इस गर्ज से पका रहे हैं कि मेरे नेबर्स में कई दिनों से उनके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, मैंने ये खाना जो है अगर तो उन तक पहुंचाना है तो मुझे इसकी खुशबू जो है उसके घर तक जाएगी, तो मुझे भेजना है उनके घर में, और अगर नहीं, आपकी भी इतनी पसली हमारी इतनी पसली नहीं कि हम उनके घर में नहीं ये बेच सकते, तो अपने किचन की जो खुशबुआत हैं उनको थोड़ी महदूद कर लें, महदूद थोड़ी सी फॉर टाइम भी, ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो कि हमारे घर में ये तरह तरह के पकवान की खुशबू नहीं आ रही। तो यही पर्दा है। क्या ख्याल है आप सबका? इस बारे में जरा सोचें कि जिंदगी के हर मरहले में, चाहे वो घर में है, आपस में बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हैं, बच्चों के सिलसिले में हमने ईमानदारी का और जिसे कहते हैं ना कि इंसाफ का तराजू पलड़ा जो है वो बरकरार रखना है, तो क्या इसमें पर्दादारी है? ये जरूर सोचना है। मेरे जहन में बहुत ही खूबसूरत क्लिप, फिर मैं कहूँगी कि डॉक्टर जो रुबीना, डॉक्टर समीना हक जो है उनका आ गया कि उन्होंने कहा कि बच्ची को जो, देखें ये कोई फतवा भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लागू करना, या ये ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत सी सजेशन उस हस्ती ने दी कि जो वाकई अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम दिया है, डॉक्टर समीना बहुत ही अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम और मर्तबा दिया है, और खिदमत खल्क बहुत माशाल्लाह करती हैं, और उनके अच्छे क्लिप्स मैं कहती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे अच्छे क्लिप्स देख के फिर फॉरवर्ड करने में, राइट एक जनरल नॉलेज कह लें जो कि मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ, अच्छी बात, और ये भी सदका जारिया होता है, कोई ये एक फतवा नहीं है या एक लागू नहीं कर दी मैंने ये चीज़ या डॉक्टर समीना ने या हमने किसी ने भी, लेकिन इसका कैसे ख्याल रखना है ये हम सब ने सोचना ज़रूर है। इस बारे में बहुत ही मुझे खूबसूरत बात लगी कि जब हम बच्ची की शादी करते हैं हमारी कोशिश होती है कि जहेज में दुनिया जहान के जो कलाबे हैं वो मिला दें, उसको जी ये देना है, उसको फ्रिज देना है, टीवी देना है, उसके इवन के गाड़ी तक, क्या क्या क्या क्या क्या तक बात जो है आज तक पहुंच गई, क्या क्या चीज़ों तक, कोई एक नहीं लामत ना ही सिलसिला कर दिया गया है बढ़ चढ़ के जहेज, तो वो अरे ये सारी चीज़ें उसने रखनी कहाँ है। अगर हम वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं हमने वॉक के लिए जाना है, तो कभी ये भी सोचा है कि वॉक किधर जाके करनी है भाई, हमने को पुरसकून सा माहौल हो, एक पार्क में ही जाते हैं ना यूजली हम, कोई ग्राउंड है, कोई ट्रैक है वॉक का, इसी तरह से ये सारा कुछ दे रहे हैं तो उसने रखना कहाँ है, कभी हमने ये सोचा है? उस मासूम को बस हम अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि तुम्हें बस जहेज दे दिया है, अब तुमने विरासत में कोई नहीं हिस्सा।

जी मोहज़्ज़द सामईन इकराम, ब्राह फाउंडेशन रेडियो 1413 AM का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है अब ऑलमोस्ट इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुका है, तो थोड़ा सा दौरानिया रह गया है हमारे प्रोग्राम का। गुफ्तगू भी हमने जहाँ जहाँ की वहाँ वहाँ पे गुफ्तगू समेटते भी गए, और साथ साथ हल जो है आपने हम सब ने मिलके निकालना इन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ का। और जहाँ कहीं भी हम रहें, खुश रहें, आप भी हम भी इंशाल्लाह, और अपनी खूबसूरतियाँ जो हैं उनका रोल जो है वो घरों में बिखेरते रहें, बाहर जहाँ कहीं भी हम जाएं, अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे जी, आमीन। और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुआ करें, खुश हो जाया करें, और नफ़रतें जो हैं उनको जितना भी हो सके हम कम कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है जी। हमारी वेबसाइट broadfoundationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। और एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो आपके लिए हमने होल्ड ऑन किया हुआ है, उम्मीद करती हूँ ये जो सॉन्ग है आपको पसंद आएगा। आइए सुनते हैं, और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद फिर आपसे इजाज़त भी लेनी होगी। तो इस वक्त ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो ज़रा समात फरमाते हैं जी।

जी मोहसिन स्वामी इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर इस वक्त ये खूबसूरतियों का सफ़र तय करते हुए प्रोग्राम अब इख्तिताम पज़ीर होने को है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा होगा और दिल की जो कहते हैं कुछ दिल की तलखी कह लें, दिल के अंदर थोड़ा सा कहीं गम छुपा होता है, कहीं एहसास ज़िम्मेदारी सता रहा होता है और बहुत कुछ लगा होता है जिसके बारे में हमारा दिल जो होता है सोच के परेशान हो रहा होता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से काफ़ी हद तक दिल को तकवीयत मिली होगी। जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जी उम्मीद करती हूँ दिल के साथ साथ दिमाग की खिड़कियाँ भी खुली होंगी, रोशन हुई होंगी, बहुत सी नई सोचें मिल जाती हैं, नए एक जाविये जो हैं इंसान की सोच में आते हैं। कि देखिए हमारे साथ मेरे साथ भी ऐसे होता है कि हम कहते हैं ओ इधर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, तो क्या करेंगे, बातों से बात निकल आती है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो वो खैर वो तो सॉन्ग है, उसके साथ साथ हमने ये ख्याल रखना होता है कि ध्यान जो है हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही रहना चाहिए और अच्छी खुद के लिए सोच, अपने घर के लिए पुरफजा माहौल सबके लिए क्रिएट करना अच्छा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि किसी से हमारा इख्तलाफी राय भी हो सकता है, क्लैश भी हो सकता है सोचों का, लेकिन हमने ये सोचना है कि हमारी सोचें जो है इतनी ख़तरनाक नहीं हो जानी चाहिए या हमारे एक्शन जो है इतने डेंजरस नहीं हो जाने चाहिए कि किसी को जो है वो किसी को खुदा ना खास्ता कोई जिच कर जाएं या किसी की फीलिंग्स जो हैं वो बुरी तरह मजरूह और हर्ट हो जाएं। तो ये तो वैसे मुझे भी बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम या शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत किसी इंसान के साथ होती हैं, वो इंसान कौन हो सकता है ज़रा मुझसे वैसे बेहतर आपके जहन में आ गया होगा फीमेल के हवाले से, वो इंसान एक ही हो सकता है लेकिन हाथ हौला ही रखना चाहिए हमें। वैसे देखिए हम सबके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि हम सबका और उस हस्ती का जिसके साथ हमारा वास्ता होता है पल पल का लम्हों का, तो उसका तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे कभी कभी चले सॉरी बोल लेना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जनाब यही है पगडंडियाँ हमारी ज़िंदगी की, ऊंच नीच अप्स एंड डाउन्स, बस ये है। और आज मन किया कि आप सबके साथ हम सब मिलके कोई रोशनियों का मस्बत रास्ता निकालें, खुशबुओं का और बेहतरी का, बेहतरीन रास्तों की तरफ। तो ये एक सब एक जैसे चेन होती है मिलके, तो हम वो चेन बनाएं इंशाल्लाह खूबसूरतियों की के जो बहुत पायदार हो। क्या ख्याल है आप सबका, तो ज़रूर इस बारे में सोचिए। और ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आपकी नज़र करते हैं, आइए सुनते हैं।

जी, मोहतरम सामईन इकराम, हमारी गुफ्तगू भी अब जो है इख्तिताम पज़ीर होने को प्रोग्राम है हमारा। ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर आप अभी तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे सुहाने सफ़र के साथ, और हमारी वेबसाइट brafrationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677, ये अच्छे से खूबसूरत से जो लम्हात हैं इनको सेलिब्रेट कर लेते हैं उस न्यूली मैरिड कपल के साथ जो कि आजकल शादियों का सीज़न। वैसे क्या ख्याल है कि कुछ कहते हैं कि जी बस ख़त्म हो चुका है, कुछ कहते हैं जारी हो सारी। खैर, ये तो माशाल्लाह लगा ही हुआ होता है ऐसा मौसम, शादियों का मौसम भी होता है, ये भी एक मौसम है, क्या ख्याल है? तो क्योंकि ये एक अपना ही मौसम होता है, इसके बारे में आप सब ज्यादा जानते होंगे, और मेरा ख्याल है कि मजीद कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सुहाना मौसम है कि वो किसी वक्त भी जो है ना वकूफ पज़ीर हो सकता है और बड़ा वो क्या कहते हैं कि ये मौसम जो है ये भी अपने अंदर बहुत खूबसूरतियां समेटे हुए होता है। तो चले एक खूबसूरत सा डेडिकेट करते हैं जी अपने न्यूली मैरिड कपल को, और बहुत से मतलब जो म्यूजिक के भी शौकीन हैं उनके लिए एक खूबसूरत सा ये एक नगमा है। तो आइए सुनते हैं और फिर उसके बाद आपसे इजाजत भी होगी।

0: जी बिल्कुल मजे सामीन इकराम, ब्रॉडफेशन रेडियो 1413 AM पर अक्षर अब आपसे इजाजत चाहेंगी। हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। इसके साथ ही आज के खूबसूरत हसीन पल जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फ्राइडे इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ फिर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे जी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आप सबके लिए तो दिल की गहराइयों से दुआ और आप का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को लाइक करने का, शेयर करने का और जहां कहीं से भी हमें ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने उन सबका बहुत शुक्रिया। फीडबैक फिर बहुत अच्छी है जी, थैंक यू वेरी मच। पर्सनल फीडबैक के लिए भी इंशाल्लाह गुफ्तगू फिर फरमाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, ढेरों ढेर। ओके जी, अल्लाह
1: हाफिज़। Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: जब देखो नया सूट, नया डिजाइन, नया अंदाज, आखिर क्या है राज?
3: इसमें राज की कोई बात नहीं, दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है।
4: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल,
2: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा,
3: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिले अनसिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं।
4: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY।
3: फाइंड अस ऑन टिकटॉक।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्राडफोर्ड BD8ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
9: on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफुट BD8 8AX फॉन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेडफोर्डेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordationradio.co.uk पर। हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 6677।

और रही हमारे हाल और अहवाल की बात, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि सुबह से धूप और छाँव का खेल जारी है। जब मैं प्रोग्राम करने आ रहा था तो टेम्परेचर 13 सेल्सियस था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक टेम्परेचर जो है 15 सेल्सियस तक जा सकता है, 15 to 16 सेल्सियस तक। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि दिन के किसी हिस्से में बारिश पड़ने का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा ये बताया गया है। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। गज़ल उसने छेड़ी का आगाज उसके नाम नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी दुख किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सबका रब है, वो हम सबका रब्बुल आलमी है।

और हर बेरिवायत हम आज भी एक हसीन गीत के तोहफे से आगाज करेंगे। गजल उसने छेड़ी का, गो हमारे मेहमानान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, जिन्हें हम दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन उनका तारुफ हम कराते हैं उस हसीन गीत के तोहफे के बाद जिसे हम किया करते हैं नाम अपने उन तमाम सामीन नाजरीन अहबाब के नाम और सोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स जो दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। इस हसीन गीत के तोहफे के बाद हम उनका तारुफ कराते हैं। और हम क्यों ये पेश करते हैं ये तोहफा, उसकी वजह यह है कि दरअसल दर हकीकत आपकी आमद ही हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत व तौकीर में इजाफा करती है। तो आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम आगाज करते हैं गजल उसने छेड़ी का, और ये तोहफा आपकी नज़र करते हैं, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारी ये नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में दुनिया के 4 कोनों में ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। अब तारुफ हो जाए हमारे उन मेहमानान गिरामी का जो तशरीफ ला चुके हैं। याद रहे कि आप भी अगर इस बज़्म में शामिल होना चाहें तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। तशरीफ लाए हैं रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं से, वकार मियां मौजूद हैं वेकफील्ड से, सुमैरा बिटिया तशरीफ लाई हैं ब्रैडफोर्ड 3 से, भगत

सिंह साहब मौजूद हैं लीड से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, डॉक्टर माहरुख साहबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, और इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। साथ ही साथ तशरीफ लाए हैं खाड़ियाँ गुजरात सात समंदर पार से हमारे मोहतरम लिसनर परदेसी मजीद साहब। हमेशा की तरह उनका पैगाम कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, सबको मेरा सलाम और ढेरों दुआएं। शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब और नवीस साहब को भी मेरा सलाम। खालिद साहब को हॉलैंड में मेरा सलाम पहुंचे। आपके अहबाब तक आपको सलाम पहुंचा दिया गया है। हम आपको दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं।

0: दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने नया सेगमेंट शुरू किया है यादों के रंग गीतों के संग। आज का जो गीत है इसे मुंतखब किया है ब्रेडफोर्ड 18 से हमारी ढेरों दुआओं से नवाजने वाली प्यारी सी बहना शहनाज ने। तो इंशाल्लाह 3 बजे के कमर्शियल के बाद हम अपना ये नया सेगमेंट, जिसका ये दूसरा दौर होगा, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। साथ ही साथ आपको भी दावत आम है कि अगर आप भी कोई गीत ऐसा सुनना चाहें जिससे आपकी कोई यादें वाबस्ता हों, वजह तस्मिया, वजह गीत को पसंद करने की सिर्फ बताना पड़ेगी आपकी, ताकि हमारे सुनने वालों को हम आपकी यादों में शामिल कर सकें। तो यादों के रंग गीतों के संग 3 बजे आज का गीत मुंतखब किया है ब्रेडफोर्ड 18 से शहनाज ने। जीती रहो। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के फौरन बाद हम आपको लीड्स लिए चलेंगे, जहां हमारे खूबसूरत लिसनर भगत सिंह साहब मौजूद हैं और अपने तोहफे को वसूल करने के मुंतजिर हैं। कहते हैं बस आपकी आमद का इंतज़ार होता है, जी चाहता है कि अपना तोहफा, अपनी पसंद का गीत सुनकर दिल को महजूस कर लूं और अपने आप को शाद कर लूं, और उसके बाद मैं इत्मीनान से बैठा आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूं। भगत सिंह साहब, ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि इस कदर बाकायदगी से न सिर्फ आप तशरीफ़ लाते हैं बल्कि हमारे इस सफ़र में आप हमारा साथ आखिर तक निभाते भी हैं। कमर्शियल के फौरन बाद आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे, आपका पसंदीदा गीत। और कहते हैं यादें तो मेरी भी इससे बहुत वाबस्ता हैं, लेकिन मैंने पहले बता दिया, मैं आपको बताऊंगा कोई गीत ऐसा जिससे मेरी हसीन यादें वाबस्ता हों, ठीक है, सर आंखों पर। तो अब हम चलते हैं कमर्शियल की जानिब।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: एंड द विनर इज,
3: एंड द विनर इज,
4: एंड द विनर इज,
2: your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: ब्रेडफोर्ड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी,
7: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट, वीजा सर्विसेज,
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
7: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: जब चाहे कॉल मिलाए
6: 01274781168। मीरपुर ट्रेवल्स। मीरपुर
9: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
9: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
9: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
9: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रेडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
10: आपकी शान
7: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274-201679,
10: UK।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुद का क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
0: और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं लीज भगत सिंह साहब के तोहफे की जानिब, लेकिन उससे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे नज़ीर अहमद साहब को, सात समंदर पार, लैया, पंजाब, पाकिस्तान से। आज वो हमारे हमराह मौजूद हैं रोज़ाना की तरह, और आज उन्होंने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया है। मियाँ, पहुंच जाऊंगा मैं वहां आपके पास। कहते हैं नज़ीर अहमद, चेक नंबर 43, IDA, लैया, पंजाब, पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी दुआ मुझ तक पहुंच गई है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, और आपका पैगाम हमेशा की तरह वही कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और हमेशा की तरह मेरा जवाब भी वही कि आप खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है। कुछ सुनना चाहें तो ज़रूर हमें बताइएगा। अभी तो हम चल रहे हैं लीड्स, जहां मौजूद हैं हमारे भगत सिंह साहब, और उनका तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे ब्रेडफोर्ड 3 से हमारी आई हुई बहुत प्यारी सी बिटिया बावर्ची खाने की रानी, जिनके दो ही शौक हैं, खाना पकाना, खाना खिलाना। अल्लाह ताला तुम्हारे इस शौक में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरा बेटा, आपने अपनी कजन्स के लिए जो तोहफा भेजना चाहा है, वो हम भगत सिंह साहब के तोहफे के बाद आपकी कजन्स को डंकास्टर में भेजेंगे, ठीक है? लेकिन अभी चलते हैं लीड्स। भगत सिंह साहब, तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीफोन की प्रॉब्लम थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गई है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी बज़्म में बर्नले से हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने आप तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और एक गीत सुनना चाहा है जो हम ज़रूर उनकी नज़र करेंगे। अभी तो हम हस्ब वादा अपनी बावची खाने की रानी प्यारी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 का तोहफा उनकी कज़न्स के नाम, ज़्यादा कज़न्स नहीं है, दुआ कीजिए कि अल्लाह इसमें इजाफा फरमाए। सिर्फ 14 कज़न्स हैं उनकी। मिडिलसब्रा में तमाम की तमाम इस वक्त हमारी गज़ल उसने छेड़ी की जीनत बढ़ाने के लिए मौजूद हैं और आपके लिए ब्रैडफोर्ड से आपकी प्यारी सी कज़न सुमेरा ने इस हसीन गीत का तोहफा भेजा है, कबूल कीजिए।

और दोस्तों, वकार मियाँ आज घर पर ही हैं, मुझे उनके गीत की फिक्र नहीं है। हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ ला चुके हैं और आज का दिन वो अपने अहले खाना के साथ गुजार रहे हैं, सो कोई फिक्र की बात नहीं है। उनका गीत हम बाद में बजाएंगे, लेकिन हम खुशामदीद कहना चाहेंगे हमारे बड़े मोहतरम जोड़ी और खूबसूरत जोड़ी कराची पाकिस्तान से। हमारे हमराह मौजूद है, आप हैं जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा। इन दोनों ने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और साथ ही साथ आपके लिए एक खूबसूरत गज़ल का तोहफा लाए हैं, जिसे हम इंशाल्लाह जब इनकी पसंदीदा गीत, जिसे मैंने नोट कर लिया है, कुछ शामिल करेंगे तो वो तोहफा भी आपकी नज़र करेंगे। ये सब कुछ होगा हमारे सेगमेंट, नाम है जिसका यादों के रंग गीतों के संग के बाद। लेकिन अभी चलते हैं बनले और शकील भाई आपकी पसंदीदा गजल आपके नाम करते हैं इस खूबसूरत शेर के साथ कि चले गए हैं न जाने कहाँ शरीके सफर, चले गए हैं न जाने कहाँ शरीके सफर, मुझे हयात की राहों में छोड़कर तन्हा। चले गए हैं न जाने कहाँ शरीके सफर, मुझे हयात की राहों में छोड़ के तन्हा। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए। आमद का शकील भाई, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

0: on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोफिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

आज का गीत मुंतखब किया है हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना जो ब्रेडफोर्ड 18 में क्याम पजीर हैं अपने अहल खाना के साथ। मैंने आपको बताया था कि इस सेगमेंट का मकसद ये है कि आपकी क्या याद वाबस्ता है इस गीत से, ये बताना ज़रूरी है। आप भी कोई गीत मुंतखब कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं और उसे हम इस सेगमेंट में शामिल भी करेंगे। शहनाज का कहना यह है कि मैं पंजाब के एक बहुत खूबसूरत छोटे से गांव में पैदा हुई, वहाँ तालीम हासिल करने के मौके नहीं थे तो बुनियादी तालीम मैंने वहाँ से हासिल की और फिर मेरे वालदैन ने मुझे मेरी नानी के पास शहर भेज दिया जहाँ मैंने स्कूलिंग की, वहीं से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जा पहुँची। लेकिन मुझे अपना गांव बहुत याद आता था और मैं गाहे बगाहे गांव का चक्कर लगा लिया करती थी। वहाँ की खूबसूरत यादें, सादा सादा लोग, खुली फ़ज़ा, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ, लस्सी, रहट की आवाज़, जानवरों के गलों में पड़ी घंटियों की आवाज़ मुझे मशहूर किया करती थी। लेकिन मैं बहुत कम उम्री में इन तमाम चीज़ों से जो मुझे बहुत पसंद थी दूर कर दी गई और इसकी वजह कोई और नहीं थी, बस ये थी कि मैं तालीम की दौलत से मालामाल हो जाऊँ। ये मेरे वालदैन की ख्वाहिश थी कि हमने तो बहुत कुछ नहीं पढ़ा लेकिन हमारे बच्चे कुछ पढ़ जाएं। सो इस तरह मैं नानी के यहाँ क़याम पज़ीर हुई। जब भी मौका मिलता मैं गांव जाती और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगी तो मैं गांव में ही जाकर रहूँगी और वहाँ की वो सादगी, खुली फ़ज़ा, खेत खलियान, जानवरों के गलों में पड़ी हुई घंटियों की मशहूर कुन आवाज़, रहट के पानी की आवाज़ और झील का किनारा भी था हमारा जो घर था, तो बेइंतहा हसीन मैं बस तसव्वुर कर सकती हूँ अब। गो अब हमारे गांव में भी बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। मैं गई थी तो मैंने ये गीत सुना था और इस गीत को सुनकर मैं अब हमेशा अपने आप से ये वादा किया करती थी कि मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव जाकर रहूंगी और इन तमाम खूबसूरतियों को और करीब से देखूंगी। वक्त गुजरता रहा, मेरी तालीम पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, आखिर वो दिन आ गया कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और अपने माँ बाप के ख्वाबों को ताबीर अता कर दी। और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि फौरन जो अम्मी अब्बू का मकसद था वो पूरा हो गया है, अब गांव जाना चाहिए। मैं अपने उन बुजुर्गों को बहुत मिस करती थी जिसकी वजह से मैं आपकी फैन बनी हूं कि आप जब बात करते हैं तो मुझे अपने वो बुजुर्ग याद आ जाते हैं। मैं बहुत एहतमाम के साथ तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव पहुंची तो अम्मी ने एक नवीद सुनाई और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे कज़न से तय कर दिया है जो सात समंदर पार बरतानिया में मुकीम है और हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने इस फ़र्ज से जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस फर्ज को पूरा कर दें। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मैं तो क्या क्या ख्वाब लेकर आई थी गांव कि गांव में ही क़याम पज़ीर रहूंगी और इन तमाम चीज़ों का लुत्फ उठाऊंगी। लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश और उनका जो कहना था कि हम चिरागे सहरी हैं
बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो हम अपनी जिंदगी में ये फर्ज अदा करना चाहते हैं। सो मुझे मेरे कजन से मंसूब कर दिया गया और फिर जल्द ही शादी हो गई। चंद माह ही मैं कयाम कर पाई थी गांव में माँ बाप के साथ, और फिर उसके बाद मैं ब्याह के यहाँ इंग्लैंड आ गई। मैं बड़ी खुशनसीब थी, मेरे कज़न थे और बेइंतहा नफीस और उम्दा आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ आए हुए बरसों बीत गए, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन एक हसरत दिल में रह गई, काश कि मैं कुछ अरसे मजीद गांव में रहकर अपने उन बचपन के दिनों को एक बार फिर ढूंढ लाती जो मुझसे तालीम के हासिल करने में गुम हुए थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं यहाँ शादी के बाद इंग्लैंड पहुँची और यहाँ की ज़िंदगी देखी, यहाँ सिलसिला शुरू हो गया, जॉब्स भी किए मैंने। जब तक बच्चे छोटे थे जॉब नहीं किया, उसके बाद मैंने जॉब शुरू किए। मेरे शरीके सफ़र बेइंतहा खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, तो थोड़ी कमी तो ये पूरी हो गई, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि बुजुर्ग जो फैसला करते हैं उसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर होती है। इसलिए कि शादी के थोड़े अरसे बाद ही मेरी वालदा मुझे छोड़कर चली गई और उस उनके जाने के थोड़े अरसे बाद वालिद भी जहाने फानी से सिधार गए। सो अब जब मैं बच्चों की माँ हूँ और यहाँ मुकीम हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि बुजुर्गों की निगाहें कितनी दूर रस होती हैं और वो जो फैसले करते हैं वो कभी गलत नहीं होते। अब हमारे कोई भी बुजुर्ग हयात नहीं है बजुर्ग आपके। ये आपकी मोहब्बत है शहनाज कि आप मुझे अपने बुजुर्गों में शुमार करती हैं, और मैं बाकायदगी से आपका प्रोग्राम यूँ सुनती हूँ कि आप हमेशा मुझे ये दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। अब मेरा कोई बुजुर्ग ये दुआ देने वाला मौजूद नहीं है। बचपन की गांव की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। आपने एक नज़्म पढ़ी थी जिसे सुनकर मैं काफ़ी देर तक रोती रही। हम आज भी वो नज़्म पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और बुज़ुर्ग हमेशा जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उनका बरसहा बरस का तजुर्बा होता है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो अपनी जिंदगी में निभा गए और इतना अच्छा जीवन साथी आपको दे गए, इससे बड़ा हसीन तोहफा आपके लिए क्या होगा कि तालीम की दौलत से भी माला माल किया और शरीक हयात आपके लिए मुंतखब किया ऐसा जिसके लिए आप अपने मुंह से खुद तारीफ करती हैं। और मैं भी गवाह हूं। मैं गवाह कैसे हूं ये भी बता दूं, कोई तहाइफ शहनाज की तरफ से आते हैं और उनके मियाँ का कहना यह है कि भाई वो प्रोग्राम सुन रही थी, उन्होंने ये सुना था और ये चीज़ आपके लिए। एक दिन मैंने जिक्र कर दिया कि मैंने यहाँ फ्लाइंग की है और पायलट का कोर्स CPL नहीं कर पाया, PPL किया। PPL होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो ऐसे ही मैंने कहा, लेकिन अब मैं जहाज़ नहीं उड़ा सकता बीमारी की वजह से, एक ऐसी मुझी बीमारी मुझे लगी थी, लेकिन अल्लाह ने आप सबके करम से फजल से और दुआओं से मुझे उससे निजात दे दी। बहरहाल ये मैंने ऐसी किसी प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो होता है ये फैमिली शो है, इसमें हम जो बातें मुझे याद आती हैं मैं अपने सुनने वालों से शेयर कर लेता हूँ। सो उसी दिन मैं जब नीचे पहुँचा तो उनके शौहर नामदार अल्लाह ताला उनकी इस शरीक हयात को सलामत रखे, इतना बड़ा एक डब्बा था जो लिए खड़े थे। मैंने पूछा कि आप, उन्होंने तारुफ कराया कि मेरा नाम ये है और मैं आपकी फैन
उनका शौहर हूँ, नाम बताया, आप जिन्हें बिटिया भी कहते हैं और बहना भी कहते हैं, और अभी तक वो मेरे पास मौजूद है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। इतना बड़ा यानी तकरीबन 4 फुट 5 फुट का जहाज है जिसे बगैर रिमोट के उड़ाया जा सकता है, तो वो उन्होंने मुझे भेजा कि आप कम से कम ये तो उड़ा लिया करें। जीती रहो मेरा बेटा, तुमने इतना ख्याल किया, लेकिन तुम्हें मैंने डाटा भी था रेडियो पर कि आइंदा मैं जिक्र करता हूँ, मुझे जरूरत थोड़ी होती है उस चीज़ की, मैं तो ऐसे ही जिक्र कर देता हूँ, गार्डनिंग मेरा शौक है, गार्डनिंग का जिक्र किया था। इतने तोहफे आना शुरू हुए कि मेरी बेगम ने मुझे वार्निंग की कि अगर अब आपका कोई तोहफा आया तो मैं घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। इतने तोहफे शहरयार साहब ने, हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर हैं, पता नहीं कितने तोहफे लंदन से गार्डनिंग के हवाले से भेजे। अभी जो आखिरी उनका तोहफा आया मैंने खामोशी से बाहर गार्डन में रख दिया, बाद में बेगम को बताया कि ये तो बाहर की चीज़ है तो रख दी। ये मोहब्बत है आपकी, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया हुआ है, फजल किया हुआ है, मुझे आपके किसी तोहफे की, बहुत से तोहफे आते हैं, कैप्स के तोहफे आते हैं कि ये कैप मेरे पास कम से कम बिला मुबालगा कोई 1000-2000 कैप्स हैं, समझ में नहीं आता। और बस वो ये होता है कि पहन के ये प्रोग्राम कर दीजिएगा, कर दिया जी। तो ये मोहब्बत है हमारे सामईन की, अल्लाह ताला ने सलामत रखे, सेहत से रखे। तो मैं वो नज्म पढ़ रहा हूँ जिसे सुनकर आप बहुत रोई थी। शहनाज प्यारी बहना, अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज्जमान में रखे, कि चलो फिर ढूंढ लें हम उसी मासूम बचपन को, चलो फिर ढूंढ लें हम उसी मासूम बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, चलो फिर ढूंढ लें हम उन्हीं मासूम बचपन को, उसी मासूम बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, चलो फिर ढूंढ लें हम उसी मासूम बचपन को, जहां गम का पता न था, जहां दुख की समझ ना थी, जहां गम का पता ना था, जहां दुख की समझ ना थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी, जहां गम का पता ना था, जहां दुख की समझ ना थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी, चलो फिर ढूंढ लें हम उसी मासूम बचपन को, बनाना और डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, बनाना और डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, कि जब सावन बरसता था तो उस कागज की कश्ती को, बनाना और डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, चलो फिर ढूंढ लें हम उसी मासूम बचपन को। और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। और एक इसके साथ जब मैंने ये नज़्म पढ़ी थी, एक कथा भी पढ़ा था कि लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन जहां पे बीता वो घर यहीं कहीं था, बचपन जहां पे बीता वो घर यहीं कहीं था, वो रीछ वो मदारी बंदर यहीं कहीं था। शहनाज रोना नहीं, रोने की बात नहीं है, अब अल्लाह ताला ने आप पर फजलो करम किया है, अच्छा जीवन साथी और सादतमंद औलाद से नवाजा है, इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो गीत जिसे सुन सुनकर आपने ये फैसला किया था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद जाकर आप गांव में रहेंगी,

0: और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट यादों के रंग गीतों के संग। आज का गीत मुंतखब किया था हमारी प्यारी सी बहना, प्यारी सी बिटिया शहनाज ने बेडफोर्ड 18 से। अब भी अगर किसी गीत के हवाले से वजह तस्मिया बताना है, वजह ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, तो आपको ये वजह बतानी कि ये गीत आपको क्यों पसंद है और इससे क्या हसीन याद, खूबसूरत या तल्ख याद वाबस्ता है, हम आपको ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ एक बहुत ही बड़े उस्ताद का किसी का शेर भेजा है हमारे, हाँ ये है परदेसी मजीद साहब, आपको पता है बहुत अदबी माशाल्लाह अदब से उनका गहरा लगाव है और बड़ा गैर मेयारी बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने भेजा है और चाहते हैं कि वो तमाम सुनने वालों की नज़र भी कर दिया जाए। अभी उन्होंने एक मिसरा भी लिखा है, अब ये नहीं पता जब परदेसी मजीद साहब बताएंगे क्या वो कोई गीत या गज़ल का मिसरा है जो सुनना चाहते हैं या वैसे ही एक मिसरा याद था लिख दिया, और बहुत खूबसूरत शेर है उनका, किसी बड़े उस्ताद का लगता है शेर तो, कि उनकी गली से गुजर रहे थे, उनकी गली से गुजरे थे क्या इत्तेफाक था, उनकी गली से गुजरे थे क्या इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका पर गमला भी साथ था, उनकी गली से गुजरे थे क्या इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका पर गमला भी साथ था। भाई बहुत अहले रौक हैं आप यार, आपकी सोहबत से तो हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं परवेश अपने परदेसी मजीद साहब। और अब हम चल रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, और कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद मैं देख रहा हूँ कोई और मेहमान को तो शामिल नहीं कर रहा, अजहर आज अभी तक नहीं शामिल हुए हैं हमारे प्रोग्राम में, उन्हें प्रोग्राम सुन के क्या लिखते हैं ये, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता, एक पुराना दोस्त याद आया है जी, वो शायर है, अच्छा वो शायर से, भाई आपके शेर भेजने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी दोस्ती अहले ज़ौक लोगों के साथ है। बहरहाल मैं देखता हूँ अगर इस का कि ये मिल जाए मुझे, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। कमर्शियल सुनते हैं और कमर्शियल के बाद डॉक्टर साहब लंच ब्रेक पर हैं, डॉक्टर मारुख साहिबा उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे।
1: Is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: बेडफोर्ड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी,
7: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट्स, वीजा सर्विसेज,
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
7: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड बेडफोर्ड।
7: जब चाहें कॉल मिलाएं
6: 01274781168
8: मीरपुर ट्रेवल्स।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड
6: हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: नहीं, नहीं,
9: अरे सुनते हैं, अगली बार पानी का इस्तेमाल ऐसा करना है कि वाह
7: मंगला कैटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है
7: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला कैटरिंग से आया है।
9: मंगला कैटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY
7: टेलीफोन 01274731555 मंगला कैटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट झुमकियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और दोस्तों, आप थे हमारे मोहतरम जनाबी शकील साहब, बंदे से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ओल्डहम, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम अय्यूब चौहान साहब और सुनना चाहते हैं ये गीत, उनकी पसंद मुख्तलिफ और निराली होती है। आज भी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो हम उनकी नज़र कर रहे हैं।

मैंने सुन लिया है और मैं अपना डीएबी रेडियो बंद कर देता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर करना था कि खराबी कहीं हमारी जानिब से तो नहीं है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ पहुँच रही है। ये सुनिए आप, देखिए।

आइए दोस्तों, अजहर साहब जो हमें ब्रेडफोर्ड की स्वादी में सुन रहे हैं, उनका तोहफा उनकी नजर करते हैं। अजहर भाई, आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों अब वक्त हुआ है हम आपको खारिया गुजरात पाकिस्तान लिए चल रहे हैं, जहां परदेसी मजीद साहब ने एक खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनकी नज़र कर रहे हैं। पीता नहीं शराब मैं, किसी शायर का बहुत उस्ताद का शेर है किसी का, कि पीता नहीं शराब मैं बेवजू किए, शायद जिस्म में रूह किसी पारसा की है। परदेसी मजीद साहब का तोहफा उनकी मोहब्बतों के नाम, खारियां गुजरात पाकिस्तान में। कबूल कीजिए।

और दोस्तों सर कॉल थी इंजीनियर्स की जानिब से कि वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सुनने वाले कह रहे हैं कि ऐसा लगता है आपको बहुत शदीद नजरा हुआ हुआ है, खांसी भी है, बुखार भी है, लेकिन मैंने अभी जब अपने डैब रेडियो पर सुना तो आवाज़ साफ थी। बहरहाल टेलीफोन में हाँ हमारी कुछ ऐसी खराबी है कि शाह साहब का भी फोन आया था और उन्होंने कहा कि भाई तबीयत सही है आपकी, तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम चल रहे हैं आपको लेकर वकार मियां, जो इस वक्त वेकफील्ड में अपने अहले खाना के साथ दिन बसर कर रहे हैं, उन्होंने एक गीत सुनना चाहा है जो हम उनकी नजर कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि आराम से मैं दूसरों की फरमाइश पूरी कर दूं और उसके बाद वकार मियां क्योंकि घर पर ही मौजूद हैं और ये उन्होंने यकीन दहानी करा दी थी कि वो 5 बजे तक साथ निभाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे वकार, और अल्लाह ताला आपकी हस्ती मुस्कुराती फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रख के आपका पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए। आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड और वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज में शामिल होना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। अभी अभी तशरीफ लाए हैं सिराज मुनीर साहब एक 5 मिनट पहले और कहते हैं कि मेरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें। आपका मोहब्बत भरा सलाम हमने अपने सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दिया है और आपकी पसंद आपके हवाले करेंगे कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। रिजवान रिजवी साहब, आप पेज पे आकर बताइए, मैंने आपसे कहा था कि कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे, तो आप नमाज पढ़ने चले गए थे कि आप फारिग हो गए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपका तोहफा और आपने जो तोहफा हमारे अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम भेजा है उनके हवाले कर सकूँ।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफुट
8: 01274201679 UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
10: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनीगो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला बहुत ही टेस्टी है और सर्विस

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसन छेड़ी। अब हम चल रहे हैं डंकास्टर सिटी। अहले डंकास्टर सिटी को मेरा सलाम पहुंचे और ये रहा आपका तोहफा सिराज मनीर साहब, कबूल कीजिए।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब रणवीर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
8: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रैडफोर्ड BD95BR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रैडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677
11: on 1413.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत्र रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत्र रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: बॉलीवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
5: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
4: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
5: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
4: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
5: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
6: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
5: जब चाहे कॉल मिलाए
4: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 अथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
10: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंग स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
5: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
10: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीज़े की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599

आंखों में गुंचा हाय निवाजिश निचोड़कर, आंखों में गुंचा हाय निवाजिश निचोड़कर, मेरे दिले शिकस्ता को नरमी से जोड़कर, होंठों पे नीम मौजे तबस्सुम को तोड़कर, मेरी तरफ खफीफ सा गर्दन को मोड़कर, कल सुबह रास्ते में सुहानी हया के साथ उसने मुझे सलाम किया कि सदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त CVFM मिड्सब्रा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही है। और सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी इस वक्त हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, आप सभी अल्लाह के फजलो करम से बखैर वाफियत होंगे। और खुदा न खास्ता अगर आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सभी, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, जाहिर है हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नवंबर दिसंबर की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, और यही मौसम होता है। अभी तो ज्यादा इतना मौसम सर्द नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद सर्द हो जाएगा, और फिर जब पड़ेंगी बर्फें लग पता जाएगा। और जी हाँ, आप अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि डबल टैप कीजिए, लाइव शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, ताकि हमारी ये नशात, हमारा ये रेडियो स्टेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंच सके, उनके पास भी जो जिन्होंने अभी तक हमें नहीं सुना, और ये आवाज घर घर पहुंचाइए। आरफ साहब बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, रासिब मोहम्मद साहब वेलकम, खुश आमदेद। और रिज आपका शुक्रिया, और जितने भी साथी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेहद शुक्रिया आप सभी का। आइए यूं करते हैं कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज करने से पहले आपको स्टूडियो का फोन नंबर बता दें। रेडियो का फोन नंबर है 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का फोन नंबर है 306677। आइएगा, कोई भी गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो हमें बताइएगा। और हाँ, आपके लिए हमारा व्हाट्सएप भी हाजिर है 00447-800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत से, आवाज है राहत फतेह अली खान की।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, बोलना हल्के हल्के, आवाज थी उस्ताद राहत फतेह अली खां की, खूबसूरत गीत था। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों ने इस गीत को पसंद किया होगा। कोई गीत सुनना चाहें अगर आपकी कोई पसंद हो तो हमें बताइएगा।

शफकत शाह जी आपने ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया आपका। और ना सिर्फ आप हमें खुद ज्वाइन कीजिए बल्कि हमारा लाइव लिंक शेयर कीजिए, डबल टैप कीजिए और हम तक पहुंचाइए। हमारे इस प्रोग्राम के जो अगला हिस्सा होगा उसमें आप सुनने वालों की टिकटॉक से ही हम लाइव कॉल्स रेडियो पे भी पेश करेंगे। तो अब यूं करते हैं कि आप सुनने वालों के लिए एक और खूबसूरत गीत पेश करते हैं, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। राना उस्मान अली, बेहद शुक्रिया आपका। सबा, बेहद शुक्रिया आपका। जितने भी साथी आ रहे हैं, खुश आमदेद।

और समीन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, और ब्रेक के बाद आपके लिए रफी की आवाज में एक खूबसूरत गीत पेश करेंगे हम। उससे पहले आपको सुनाते हैं वसीशा की एक खूबसूरत गजल, कि दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, तू मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, तू मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। और तुम्ही ने हमको सुनाया न अपना दुख वरना, तुम्ही ने हमको सुनाया न अपना दुख वरना, दुआ वो करते कि हम आसमां हिला देते। तुम्ही ने हमको सुनाया न अपना दुख वरना, दुआ वो करते कि हम आसमां हिला देते। और वो तेरा गम था के तासीर मेरे लहजे की, वो तेरा गम था के तासीर मेरे लहजे की, कि जिसको हाल सुनाते उसे रुला देते।

0: और तुम्हें भुलाना अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना तो अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। और तुम्हारी याद ने कोई जवाब ही ना दिया, तुम्हारी याद ने कोई जवाब ही ना दिया, हमारे मेरे ख्याल के आंसू रहे सदा देते। और अब चलते हैं ब्रेक पे।
1: 13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज Bradford Asian Radio।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी।
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स, वीजा सर्विसेज,
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, बैफुट।
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168।
7: मीरपुर ट्रेवल्स।
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और सामिन, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल के इस हिस्से में खुश आमदेद, और जितने भी इस वक्त टिकटॉक के जरिए हमारे सुनने वाले आ रहे हैं आपको भी खुश आमदेद, और जो स्टूडियो में कॉल्स कर रहे हैं आपका भी बेहद शुक्रिया, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हम। और तरन, आपने एक फरमाइश भेजी थी, मोहम्मद रफी की आवाज आप सुनना चाह रही हैं, तो आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक खूबसूरत गीत हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म का नाम है अदालत। जी चाह रहा है कि इससे पहले वसी चाह की एक खूबसूरत नज्म है दूरी के हवाले से, लास्ट कॉल, वो आप सुनने वालों के नाम करते हैं कि कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, मैं बहुत मसरूफ हूँ मुझको बहुत से काम हैं। कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, मैं बहुत मसरूफ हूँ मुझको बहुत से काम हैं, इसलिए तुम आओ मिलने मैं तो आ सकती नहीं। हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, तुम जो हो मसरूफ तो मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, तुम जो हो मशहूर तो मैं भी बहुत मारूफ हूँ, तुम अगर गमगीन हो मैं भी बहुत रंजूर हूँ, तुम थकन से चूर तो मैं भी थकन से चूर हूँ। और जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी। जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं भी अब फारग नहीं मुझको भी लाखों काम हैं, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम हैं। मेरी आंखें भी बहुत बोझल हैं, सोना है मुझे, रात जगों के बाद अब नींदों में खोना है मुझे, मैं लहू अपनी अनाओं का बहा सकता नहीं, तुम नहीं आती जो मिलने मैं भी आ सकता नहीं। उसको ये कह के वसी मैंने रिसीवर रख दिया और फिर अपनी अना के पाँव पे सर रख दिया। बताइएगा नज़्म आपको कैसी लगी।

और सामीन अभी आप पसंद सुन रहे थे तरन की, बेहद शुक्रिया तरन आपका। और सामीन अगर आज के इस प्रोग्राम में कोई गीत सुनना चाहें तो आप भी हमें बता सकते हैं, आपकी फरमाइश को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के हमें दिली खुशी होगी। वसीशाह लिखते हैं कि किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मंडेरों से चरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता, किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मंडेरों से चरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता। और हमारी सोच की परवाज को रोके नहीं कोई, हमारी सोच की परवाज को रोके नहीं कोई, नए अफलाक पे पैरे बिठाकर कुछ नहीं मिलता। और कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में बसाकर कुछ नहीं मिलता। कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में सजाकर कुछ नहीं मिलता। और सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। और उसे कहना के पलकों पे न टांके ख्वाब की झालर, उसे कहना के पलकों पर न टांके ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। और ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। और न जाने कौन से जज्बे की यूं तस्कीन करता हूँ, न जाने कौन से जज्बे की यूं तस्कीन करता हूँ, बज़ाहिर तो तुम्हारे खत जलाकर कुछ नहीं मिलता। और फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, हर एक को दास्ताने दिल सुनाकर कुछ नहीं मिलता। फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, हर एक को दास्ताने दिल सुनाकर कुछ नहीं मिलता। और उसे मैं प्यार करता हूँ तो मुझको चैन आता है, वो कहता है उसे मुझको सताकर कुछ नहीं मिलता। और मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज आती है, किसी के हिजर में नींदें गवाकर कुछ नहीं मिलता। और जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, बस ही बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। बताइएगा वसी की ये गजल आप सुनने वालों को कैसी लगी। और अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आएगा।

और सामिन ने ब्रेक के बाद और आपको एक खूबसूरत गीत हमने सुनाया, उसके बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, खूबसूरत गीत था, उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और अब शायर की एक खूबसूरत तख्लीक महिंद्रा कपूर की आवाज है, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीज़े की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
14: or
0: 07800 599 563.
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
15: Bradford Asian Radio, Medium Wave 1413 AM, Bradford Asian Radio.

0: और सामीन, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ यही नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी सुन रहे हैं। अपने सुनने वाले वो चाहे हमें टिकटॉक के जरिए सुन रहे हों या रेडियो के जरिए सुन रहे हों, आप जहाँ कहीं भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से हम खुश आमदेद कहते हैं। और अब यूं करते हैं कि आपकी आवाज़ें पहुँचाते हैं सुनने वालों तक भी। तो सबसे पहले AMK आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए ताकि आपको हम सुनने वालों से आपकी मुलाकात करवाएं, आपकी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। AMK क्या हाल है, आप खैरियत से ठीक है?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे
0: हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। वैसे तो आप हमारे साथ खासी देर से मौजूद थे लेकिन अब लाइव कॉल्स के सिलसिले में सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहते हैं। तो आज सुनने वालों के लिए क्या सुनाएंगे आप?
1: बहुत शुक्रिया जी। जी ये कलाम है रियाज शाहिद साहब का।
0: रियाज शाहिद जी जी जी, इनायत कीजिए।
1: याद करता है कहां कोई मुसीबत के सिवा, याद करता है कहां कोई मुसीबत के सिवा, कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: क्या कहने क्या कहने, खूबसूरत है, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: याद करता है कहां कोई मुसीबत के सिवा, कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: कहते ना कि जरूरत मार देती है गरूर बेनियाजी को, जरूरत मार देती है गरूर बेनियाजी को, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता।
1: फिर से दरपेश है तन्हाई की सूरत यारो,
0: क्या कहने,
1: फिर से दरपेश है तन्हाई की सूरत यारो, वक्त कटने लगा अब मेरा शिकायत किसे।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: बहस ओ तकरार अबस हो गई कल शब जिस पर, बहस ओ तकरार अबस हो गई कल शब जिस पर, मसला था ही नहीं हुर्फ खिजालत किसे।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मुनकता रब्त मेरा उससे हुआ है क्योंकि, मुनकता रब्त मेरा उससे हुआ है क्योंकि, बात करता ही नहीं कोई अजियत के सिवा।
0: क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। अच्छा।
1: मुनकता रब्त मेरा उससे हुआ है क्योंकि, बात करता ही नहीं कोई अजियत के सिवा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: दोस्ती प्यार वफा रिश्ते सभी लफ्ज हुए, दोस्ती प्यार वफा रिश्ते सभी लफ्ज हुए, वो मिला पर ना मिला दिल की कदूरत के सिवा।
0: क्या कहने, वाह वाह।
1: ये तयकुन था मुझे छोड़ के ना जाएगा,
0: ये तयकुन था मुझे छोड़ के ना जाएगा,
1: छोड़ के ना जाएगा पर मुझे छोड़ गया अपनी सहूलत के सिवा।
0: क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है, वाह वाह।
1: मुमकिन ही नहीं जिसकी रविश में यारो, जब्त मुमकिन ही नहीं जिसकी रविश में यारो, क्या कहे उसकी खिरत क्या है जहालत के सिवा।
0: बहुत खूब। जो इससे पहले वाला शेर था वो सुनते हुए एक शेर जहन में याद आ गया था इसी हवाले से, कि चल दिए तुम भी हमें छोड़ के तन्हा आखिर, चल दिए तुम भी हमें छोड़ के तन्हा आखिर, साथ चलते तो नई रस्म के बानी होते।
1: जी जी। फासले पाटने का काम उसे आता नहीं, फासले पाटने का काम उसे आता नहीं, उसमें हर बात की बहुतात मोहब्बत के सिवा।
0: बहुत अच्छे। कहते ना कि नफरत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, नफरत हो मोहब्बत हो कोई गम के खुशी हो, हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं रखते, और रखते तो है हम और भी कुछ काम जरूरी, लेकिन तेरी चाहत से ज्यादा नहीं रखते।
1: रफ्तगां दे गए मंजिल की खबर यूं शाहिद, रफ्तगां दे गए मंजिल की खबर यूं शाहिद, नाम पैदा नहीं होता है रियाजत के सिवा।
0: बहुत खूब।
1: याद करता है कहां कोई मुसीबत के सिवा, कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: बहुत अच्छे,
1: बहुत शुक्रिया।
0: कहते हैं ना कि वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, खैरात भी सखी से न मिलती फकीर को।
1: बहुत खूब
0: जी जी,
1: बहुत शुक्रिया
0: जी, यूं करते हैं कि हम एक एक गजल सभी से सुनते जाते हैं और फिर सेकंड राउंड लगा लेंगे। अब सीक्रेट आप अनम्यूट कीजिए अपनी माइक, आपसे बात कर लेते हैं।
1: जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। जी इनायत कीजिए, आज
1: शुक्रिया
0: क्या सुनाएंगे सुनने वालों के लिए?
1: जी। जरूर, मेरे पास नसीरुद्दीन नसीरी शाह साहब की एक खूबसूरत गजल।
0: बहुत कादरुल कलाम शायर, शायरी आप जुबान उन्हें कहा जाता है ना, सात जुबानों पे उन्हें दस्तरस थी लिखने की। जी जी
1: जी कोशिश
0: जी
1: कोशिश मांगते हैं आपकी। जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी तो फिराक है वो अजल से दिल में मकी सही।
0: बहुत खूब,
1: मेरी जिंदगी तो फिराक है वो अजल से दिल में मकी
0: मक्की सही।
1: सही। वो निगाहें शोक से दूर हैं, रगे जान से लाख करी सही।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने,
1: बहुत शुक्रिया। और हमें जान देनी है एक दिन,
0: हमें जान देनी है एक दिन।
1: वो किसी तरह हो कहीं सही।
0: बहुत खूब,
1: हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह हो कहीं सही। हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
1: बहुत शुक्रिया,
0: जिस
1: बहुत
0: दर्द
1: शुक्रिया।
0: से, कहते हैं फैज, कहते हैं ना कि जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं।
1: जी क्या
0: और
1: कहते
0: मोहसिन नकवी
1: हैं।
0: का भी खूबसूरत शेर था ना कि ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मकतल को सुरखरू करके।
1: शुरू शुरू करके
0: जी
1: वाह। और शाह साहब लिखते हैं कि सरे तूर हो सरे हश्र हो,
0: आहा,
1: हमें इंतजार कबूल है।
0: बहुत खूब,
1: सिरे दूर हो सिरे हश्र हो, हमें इंतजार
0: कबूल है,
1: कबूल है। वो कभी मिले वो
0: कहीं
1: कहीं
0: मिले
1: मिले, वो कभी सही
0: वो
1: वो कहीं
0: कहीं सही।
1: सही।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर से पढ़िएगा, खूबसूरत है, वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: सिरे दूर हो सिरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही।
0: क्या कहने, खूबसूरत है,
1: और ना हो उन पे मेरा जो बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं।
0: आहा,
1: ना हो उन पे मेरा जो बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूं, वो मेरे नहीं तो नहीं
0: तो
1: सही।
0: नहीं सही, खूब है, वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया। और मुझे बैठने की जगह मिले,
0: मुझे बैठने की जगह मिले,
1: मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरजू का भरम रहे।
0: वाह वाह,
1: मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरजू का भरम रहे। तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन से करी सही।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। और तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुजर की जमी सही।
0: आहा,
1: तेरा दर तो हमको
0: न
1: न
0: मिल
1: मिल
0: सका,
1: सका, तेरी राह गुजर की जमी
0: सही,
1: सही। हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहां
0: हाँ
1: सही।
0: हाँ हाँ कहते हैं ना कि एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, वो भटक जाते हैं कई जिनके खुदा होते हैं।
1: क्या कहने।
0: और
1: और मेरी जिंदगी का
0: जी
1: नसीब है,
0: जी जी
1: नहीं दूर मुझसे करीब है।
0: हाँ
1: मेरी जिंदगी का नसीब है, नहीं दूर मुझसे
0: करीब है,
1: करीब है। मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और खूबसूरत शेर के जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए।
0: बहुत खूब,
1: जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हश्र पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही वो
0: वो
1: यहीं
0: यहीं
1: सही।
0: सही। बहुत खूब, कहते हैं ना कि बड़ा मजा हो कि मैशर में हम करें शिकवा, बड़ा मजा हो कि मैशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए।
1: क्या कहने। और मक्ता सुनिए कि वो उसे देखने की जो लो लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम।
0: आहा,
1: उसे देखने की जो लो लगी, तो
0: तो नसीर
1: नसीर
0: देख ही
1: देख ही लेंगे
0: लेंगे
1: हम।
0: हम।
1: वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशीं
0: नशी
1: सही,
0: सही, बहुत खूब बहुत
1: वो हजार पर्दा
0: पर्दा
1: नशीं
0: नशी
1: सही।
0: सही। मुझे
1: बहुत शुक्रिया।
0: इब्ने इंशा का इस गजल आपकी सुनते हुए वो शेर बार बार ध्यान में आ रहा था कि दिल
1: जी
0: गम से बहुत बोझल है, दिल गम से बहुत बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है, दिल गम से बहुत बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है, इस बात से हमको क्या मतलब, ये क्यों कर हो, ये कैसे हो।
1: ये कैसे हो,
0: जी जी
1: बेशक
0: जी जी
1: बहुत
0: सही सही। कोई एक गजल और भी सुना दीजिए अगर कुछ है सिलसिला। चलिए,
1: चले
0: या फिर यूं करते हैं कि अभी हम वो जो
1: जी
0: सिलसिला रखा हुआ है
1: जी
0: उसके
1: आगे
0: जरिए
1: चलते हैं।
0: एम से भी सुन लिया और आपसे भी, अब चलते हैं
1: जी जी
0: सकूत, आप
1: जी
0: अपनी माइक
1: सकूत
0: अनम्यूट
1: से सुनते
0: कीजिए।
1: हैं नेक्स्ट टर्म में फिर इसी तरह।
0: जी
1: जी
0: जी आप
1: प्लीज
0: लाइन पे ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए, ठीक है।
1: जी जी
0: सकूत
1: जी
0: आप
1: बोल
0: अपनी
1: रहे
0: माइक आप खोलिए,
2: जी
0: एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपसे बात होती है।

0: और सामीन अब लाइन पे हमारे साथ जनाब शकील साहब तशरीफ फरमा है, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब। जी शकील साहब, आपको हमारी आवाज सही आ रही है? जी जी, खुश आमदेद कहते हैं आपको आज के रंगे महफिल में। जी वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम।
1: उनकी गजल है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है,
0: वाह
1: फिक्र कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है, चार दिन दुनिया फानी का बशर मेहमान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। खैर और शर का जायजा लेता रहा जो हर नफ्स,
0: आहा
1: चश्मे हक आगा में है बेशक वही इंसान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आए हैं दुनिया में काम अच्छे करने के लिए, आए हैं दुनिया में काम अच्छे करने के लिए, वरना समझो जिंदगी गुमनाम है बेजान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिनको रुस्वा कर रहा है खुद परस्ती का नशा, उनसे उम्मीद वफा जो रखे वो नादान है।
0: बहुत खूब।
1: मुझे गम से सिर्फ टकराना नहीं कोई कमाल, पुरसकूं माहौल भी है दोस्त तूफान है।
0: बहुत खूब शकील साहब बहुत।
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना,
0: वाह वाह।
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना, वादा ए मेरो वफा से आज वो अनजान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। आखिर शेर कहते हैं, जाने वाले अपनी यादें दे गए हमें,
0: वाह
1: मेरी तनहा जिंदगी पर उनका ये
0: एहसान है। बहुत खूब।
1: तो एक और सुना दो अगर।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: असलम गुरदासपुरी।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: अपनी सूरत का ही दीदार दोबारा कर लें, डूबते चांद का हम फिर से नजारा कर लें।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए,
0: बहुत ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह। जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए,
1: गनीमत तो नहीं जिसके लिए, है देखम जर्फ की
0: हर बात गवारा कर लें। बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। शेख जिस ऐद की देता है मिसाले हमको,
0: आहा
1: कैसे उस ऐद को हम जिंदा
0: दोबारा कर लें। बहुत खूब।
1: आसमानों पे तो इंसान नहीं रह सकते,
0: आसमानों पे तो इंसान नहीं रह सकते,
1: नहीं रह सकते, जैसे मुमकिन हो जमीन पर ही
0: गुजारा कर लें। बहुत खूब बहुत खूब।
1: अब तो बीमारे मोहब्बत की है हालत नाजुक, चारा साजों से कहो कोई चारा
0: कर लें। बहुत खूब।
1: जिसके इमाम ही इंसान, जिसके इमाम है ही इंसान से हो नफरत शामिल, किस तरह ऐसे सितमगर से गुजारा कर।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: अब तो इस शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे दिल कर ही कभी, जिसे मिलकर ही कभी जिक्र
0: तुम्हारा कर लें। बहुत खूब बहुत खूब।
1: शेर कहते हैं, डूब जाते हैं घड़ी पल में सितारे, असलम डूब जाते हैं घड़ी पर घड़ी पल में सितारे, असलम किस तवक्को पे उसे आंख का तारा कर ले।
0: क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब। और इस गजल का सबसे खूबसूरत वही शेर था कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं कि जिसके लिए ऐद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ले। बहुत खूब।
1: तो
0: बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज अल्लाह। और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, हमारे बहुत ही रेगुलर और मोहतरम कालर, बरले से तशरीफ लाते हैं, हमेशा खूबसूरत शायरी सुनाते हैं, और नवाब साहब खुश आमदेद कहते हैं, आपको सुना देते हैं कोई अच्छी सी गजल, कोई नज्म आपके नाम करते हैं। चलिए आपको चंद अशआर सुना देता हूँ अमजद इस्लाम अमजद के। लिखते हैं कि करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया, बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खिलकत, बिना देखे बिना ठहरे, जिसे तुम वक्त कहते हो, धुंधल का सा कोई जैसे जमीन से आसमान तक है, ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहाँ तक है, करो जो बात करनी है। बताइएगा नवाब साहब, आपको नज़म पसंद आई अमजद इस्लाम अमजद की? और अब जो हमारे साथ सकूत, आप अपनी माइक खोल लीजिए, आप उससे कुछ सुनते हैं जी, आप अपनी माइक खोलिए जी। जी
2: मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर था ना विसाल था।
0: बहुत खूब।
2: मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर था ना विसाल था, मेरे मौसमों के मिजाज का तुझे मेरा कितना
0: ख्याल था। बहुत खूब
2: शुक्रिया। किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई।
0: हाँ हाँ, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई। क्या कहने, लाजवाब है।
2: और कभी मौसमों के शराब में, कभी बामो दर के अजाब में। कभी मौसमों के शराब में, कभी बामो दर के अजाब में, वहां उम्र हमने गुजार दी जहां सांस लेना मुहाल था।
0: बहुत खूब।
2: और शुक्रिया। और कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए।
0: वाह,
2: कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग
0: कैसे उजड़ गए।
2: कोई मीर जैसा गिरफ्ता दिल तेरे सामने की मिसाल था।
0: बहुत खूब।
2: और शुक्रिया। और तेरे बाद कोई नहीं
0: बाबा।
2: कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग
0: कैसे उजड़ गए।
2: कोई मीर जैसा गिरफ्ता दिल तेरे सामने की मिसाल था।
0: बहुत खूब।

0: लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानेहा।
1: बहुत खूब।
0: कहीं खूने दिल से लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानेहा,
1: सानेहा।
0: वो अधूरी डायरी खो गई, अब न जाने कौन सा साल।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा।
0: बहुत शुक्रिया आप सबके खूबसूरत सलाम का।
1: बहुत शुक्रिया। और जो के सफर, अब आप अपनी माइक ओपन कर लीजिए, आपसे सुनते हैं और इसके बाद ब्रेक पे हम जाएंगे, और ब्रेक के बाद तकरीबन 5-7 मिनट के बाद हम आएंगे। जो के सफर, आप अपनी माइक खोल लीजिए।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? खैरियत से हैं? ठीक है जोक?
2: अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी महफिल सजी हुई है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत नुमाज।
2: दिल खिंचे चला आता है और याद रहता है कि वेंसडे को आपकी महफिल होती है और
1: सैटरडे को भी। जी जी, एवरी वेंसडे और एवरी सैटरडे यूके टाइम 8-10। जी
2: जी, तो वैसे मैं बर्मिंगम से हूँ और हमारा बर्मिंगम का चैनल रेडियो एक्सेल, उस पर मैं रेगुलर आती हूँ एवरी सैटरडे।
1: जी जी
2: जी, तो एक गजल लेकर आई हूँ आपकी महफिल में।
1: जी जी, इनायत कीजिए।
2: कुछ इस तरह से है कि आज जाते जाते फिर उसने सर शाम लौट आने का वादा किया है।
1: वाह वाह,
2: शुक्रिया। ना नमी होगी उसकी आंखों में, आज फिर उसने हर गम बुलाने का
1: वादा किया,
2: वादा
1: है।
2: किया
1: बहुत
2: है। शुक्रिया। उदास रात में भी
1: बहुत शुक्रिया
2: रुत पुरफिजा होगी।
1: वाह वाह,
2: आज उसने फिर से मुस्कुराने का
1: वादा किया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। जिसकी याद में नींदें उचाट थी, आज उसने फिर अपनी बाहों में सुलाने का वादा किया है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
2: शुक्रिया। जिसके लम्स से ये रूह प्यासी थी, आज मुझ में समा कर फिर से उसने तिश्नगी मिटाने का वादा किया है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। शम्मा की तरह जल जाती उसके इंतजार में, आज उसने फिर परवाने की तरह जल जाने का वादा किया है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। राजदान बनाकर मुझे अपनी जात का, आज उसने हर राज बताने का वादा किया है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: और आखिर में मकता है कि जिसके चले जाने पर फिर सायरा रूठ जाएगी, जिसके चले जाने पर फिर सायरा रूठ चले जाएगी, आज उसके आने पर फिर से उसने मनाने का वादा किया है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। आप अपनी माइक अब म्यूट कर लीजिए और वापस चलते हैं एएमके। बल्कि यूं है कि अब हमारी ब्रेक बिल्कुल आ गई है, तो एएमके आपसे बात होगी। और अब्दुल करीम अली साहब, आप भी आ चुके हैं, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और इनविटेशन भेजिए, आपको भी ज्वाइन कर लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी कॉल भी हम लेंगे। सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर ब्रेडफोर्ड से, और यही नशियात आप ब्रेडफोर्ड के डब रेडियो पे भी सुनते हैं, BFD एशियन रेडियो के नाम से आप हमें वहां पे सर्च कर सकते हैं, और डिजिटल साउंड में आप हमारी ये नशियात वहां भी सुन सकते हैं। ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट है, और इस वक्त की ये नशियात आप लिंक FM शेफील्ड से भी सुन रहे हैं 96.7 FM पर। नवाब, बेहद शुक्रिया आपके इज्जत अफजाई के लिए, बहुत नवाजिश, सलामत रहें, खुश रहें। और अब यूं है कि हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप हमें TikTok पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़िया शाह खुश आमदेद आपको भी कहते हैं। आप हमारी ये लाइव ना सिर्फ खुद पसंद कीजिए, इसे डबल टैप कीजिए, बल्कि आप इसे रीपोस्ट भी कीजिए, लाइव शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी ये नशियात दीगर दोस्तों तक भी पहुँच सकें। और यूं करेंगे कि अब एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, और ब्रेक के बाद जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, TikTok पे हमारे साथ मौजूद हैं, या फिर स्टूडियो के नंबर 01274306677 के जरिए आना चाहें, उन्हें भी खुश आमदेद कहेंगे। और हमारा व्हाट्सएप है 00447-800-599-563।
3: रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1430 AM, DAB+, मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford.

0: Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
9: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
10: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
10: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
12: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और सामीन ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदेद। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ डेप पे भी आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुनते हैं, मुजाफात में सुनते हैं। और यही नशात आप इस वक्त लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे भी सुन रहे हैं। और अभी आपके लिए एक गीत क्यों कर रहा था, तो उस गीत से मुझे उस गीत की थोड़ी सी पैरोडी याद आ गई। आपने एक दौर में एक गीत सुना होगा शायद बचपन में कहीं, कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, फिल्म का नाम है गालिबन लैला मजनू। तो हमारे एक शायर हैं सरफराज शाहिद पिंडी इस्लामाबाद के, बड़े अच्छे शायर थे, तो उन्होंने इसकी क्या ही खूबसूरत तजमीन की, इसकी पैरोडी बनाई कि हेरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, हेरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, ये जो पाउडर है सुंघा दो मेरे दीवाने को। हेरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, ये जो पाउडर है सुंघा दो मेरे दीवाने को, ताकि मर जाए किसी रोज नशे के हाथों, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अब साथ साथ उस गीत के थोड़े से बोल सुनाते हैं, और फिर जो भी हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें भी लाइव लेके हम चलेंगे।

0: कार्पेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कार्पेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कार्पेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कार्पेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कार्पेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कार्पेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
0: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: बदतमीज जानवर,
7: ओ लल्ला।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: जापान जाने वाले मुसाफिर की खुशखबरी।
1: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
0: सस्ते फ्लाइट टिकट, वीजा सर्विसेज,
1: उम्रा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
0: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
1: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
2: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: जब चाहे कॉल मिलाए
0: 01274781168
2: मीरपुर ट्रेवल्स।
3: मीरपुर
0: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
1: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
4: safewayrider.co.uk।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर,
6: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
6: मैनिंगम सुपर स्टोर,
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
8: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीज़े की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत्र रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत्र रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगा

0: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
0: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
0: 01274317644।
2: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
0: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
6: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
6: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 5.

0: my dignity.
1: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
7: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
7: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: नीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
7: जब चाहे कॉल मिलाएं
6: 01274781168
8: नीरपुर ट्रेवल्स
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
7: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू लज्जत और जायका

0: कह के मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राफर्ड BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford BD95 ER 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
0: 33 Wetley Lane Bradford
1: 01274201679। UK।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियंजले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.